सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, सक संवत 1948, भाद्र माह की तिथि 10, तदनुसार सितंबर 1 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
2: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
2: Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year compared to 6.9% during the same period previous year. Ministry of Statistics and Program Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary in the Ministry, Dr. Saurabh Garg, said growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. Bihar and Jharkhand have signed an MOU on sharing of Son River water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said the agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India. He said the agreement will provide irrigation water to lakhs of farmers in large rural areas of Bihar and Jharkhand, along with drinking water for the people. The fourth Indo-German Environmental Forum will be

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल के स्वर में। कार्यक्रम का अगला भक्ति रचना हमने लिया है आशा भोसले और यशोदास के स्वरों में।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:10 पर। दोपहर के 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 3:00। शाम के 4:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। मुख्य समाचार का प्रसारण होगा शाम के 5:00 आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए हुए गीत। शाम के 5:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम के 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का। शाम के 6:30 का समय होगा कार्यक्रम संथाली कार्यक्रम का। शाम के 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:15 का समय होगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम के 7:30 का समय होगा किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे समाचार रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत मृदुला दास भट्टाचार्य के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म आए दिन बाहर के इस गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म आम्रपाली का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अपनापन से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: अभी आपने सुना फिल्म अंधा कानून का ये गीत आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345406 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इस जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, फिल्म बाहर आने तक का ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म बलमा का ये गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दामिनी से, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहर चाईबासा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: तो पैसे जमा कराती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
5: think that number reinforces.
6: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं. भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है. और मुझे लगता है कि जो GDP रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है.
2: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं. अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है.
5: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है. हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है. ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है. भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है.
5: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है. यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते. पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया. हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी. मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा.
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ. नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं.
7: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं. जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है. वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है. भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं. बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई. नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है. 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है. मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज.
2: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
8: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंदुझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए

0: किया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. India believes that the energy, innovation and entrepreneurship of young people can give a fresh impetus to regional development and cooperation. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
3: On the first day of his visit yesterday, PM Modi engaged in cultural events.

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर हुआ समझौता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। संथाल परगना में घुसपैठ की जांच और डिटेंशन सेंटर की मांग। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर का 2 दिवसीय धनबाद दौरा। मुरडीह कोल बेड मीथेन परियोजना का किया निरीक्षण। अक्टूबर 2027 से गैस बिक्री की तैयारी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक। टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। खूंटी सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस समझौते के तहत बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.0 MAF जल आवंटित किया गया है। इससे झारखंड के पलामू गढ़वा सहित आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल बंटवारे के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।
1: नदी में बहते हुए पानी को लेकर आज हम और हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के साथ जो सोन नदी के ऊपर बहने वाले पानी में जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी होगी, एक लंबे समय से चले आ रहा ये विवाद अंततः अपने मकाम पर पहुंचा है और ये जरूरी है कि हम सब मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इन समस्याओं का समाधान करें।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने 2019 से 2024 के मतदाता आंकड़ों का हवाला देते हुए पाकुड़, राजमहल, लिट्टीपाड़ा सहित 14 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय की वृद्धि दर अन्य की तुलना में काफी अधिक होने का दावा किया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी और आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और इसमें राजनीतिक संरक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान, खतियानों का सत्यापन और संथाल परगना में डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासन की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन HMIS ICU CCTV डैशबोर्ड और HRIS सहित विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट की सुविधा 15 दिनों के भीतर शुरू करने तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग की ओर से राजधानी रांची में कल से मतदाता पंजीकरण तथा मतदाता पंजी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर रजिस्टर विषय पर होने वाले इस सम्मेलन के लिए अब तक 59 रिसर्च पेपर प्राप्त हो चुके हैं।
2: इंडिया में कितना भी इंस्टीट्यूशन है, सभी के हम लोग को प्रचार करते हुए उसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए था। उसमें अभी 59 पेपर्स प्रेजेंटेशन हो रही है। राकेश वर्मा सर वो आएंगे, आपका DG AAADM आएंगे, साथ में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट है इलेक्शन कमीशन का, वहां से भी ऑफिसर्स लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
0: लातेहार में जिला प्रशासन और DMFT फंड के सहयोग से किसानों द्वारा उत्पादित प्रसिद्ध जीरा फूल चावल की 6.70 मैट्रिक टन खेप को गुड़गांव दिल्ली के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त संदीप कुमार, उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद और DPM JSLPS संतोष कुमार ने समाहरणालय परिसर से वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महुआडाड़ FPC के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसान से पर भेजी गई इस खेप का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय बढ़ाना और जीरा फूल चावल को व्यापक बाजार और पहचान दिलाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर दो दिवसीय दौरे पर धनबाद स्थित BCCL पहुंचे, जहां उन्होंने कोयला भवन में कंपनी के उत्पादन, डिस्पैच और भविष्य की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कपूर ने पुटकी स्थित मुनिडीह में कोल बेड मिथेन ब्लॉक 1 परियोजना का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में तरुण कपूर ने बताया कि कोल बेड मिथेन गैस का इस्तेमाल भविष्य में CNG और घरेलू गैस के तौर पर किया जा सकता है।
3: हमारे यहाँ कुछ ही जगहें हैं जहाँ पे मीथेन गैस है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के दायरे में आती है, इसलिए वही करेंगे। परंतु अब कोल इंडिया को भी ये अधिकार दिया गया है कि जहाँ भी उनके कोल फील्ड में गैस निकलेगी वो गैस निकाल सकते हैं, और गैस जो है वो पाइप में डालनी है, पाइप में डाल के फिर वो घरों में भी यूज हो सकती है और CNG की तरह गाड़ियों में भी इस्तेमाल।
0: केंद्र सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक के कारण टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में आसनसोल आद्रा, आद्रा मिदनापुर और आद्रा बिष्णुपुर मेमू रद्द रहेंगी, जबकि गोमो चक्रधरपुर एक्सप्रेस और चक्रधरपुर गोमो मेमू महुदा तक ही चलेंगी। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 2, 5 और 6 सितंबर को आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। मौसम। खूंटी, गुमला, सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए भारी बारिश, वज्रपात और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। सोन नदी जल बंटवारे की खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड और बिहार के बीच 25 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मानसरोवर गए पोटका के दंपति नेपाल में लापता। प्रभात खबर की सुर्खी है, मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा। दैनिक जागरण लिखता है, सिविल जज परीक्षा रद्द करने के मामले की सुनवाई एकल पीठ में होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर हुआ समझौता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र, संथाल परगना में घुसपैठ की जांच और डिटेंशन सेंटर की मांग। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर का 2 दिवसीय धनबाद दौरा, मुनिडी कोल बेड मिथेन परियोजना का किया निरीक्षण, अक्टूबर 2027 से गैस बिक्री की तैयारी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक, टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। खूंटी, सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं आनंद महतो और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आपने सुना कुरमाली लोकगीत कलाकार थे आनंद महतो और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 1 सितंबर। जी हाँ, 1 सितंबर को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण दिवस स्वास्थ्य और सही पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह पूरा सप्ताह विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दौरान देश भर में संतुलित आहार, स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण से जुड़े विभिन्न सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं भेंटवार्ता, संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर बीके सिंह, उनसे बातें कर रहे हैं अवनी सिन्हा।
1: जिस तरह की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, ऐसे में कुछ पल हम अपने लिए भी नहीं निकाल पाते, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी हम नहीं सोचते हैं और हम जब चाहें जो भी खा लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम मिल रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा के चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह से, जिनसे हम बातें करेंगे संतुलित आहार हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो संतुलित आहार है ये क्या है?
2: संतुलित आहार वह आहार है जिसमें जिंदगी के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, उनका उचित समावेश जिस भोजन की शैली में रहता है उसको स्वस्थ आहार कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं।
1: तो आज के समय में लोग का जो इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, इस समय वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं और इससे क्या उन्हें नुकसान हो सकता है?
2: आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास समय बहुत कम रह गया है। हर इंसान के लिए 24 घंटे का समय है, लेकिन करियर ओरिएंटेड होने की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से अति व्यस्तता के कारण समय कम निकाल पाते हैं, इसलिए लोग फास्ट फूड की तरफ मुड़ रहे हैं। फास्ट फूड कभी भी बैलेंस डाइट नहीं है। इसके सेवन से आप देख ही रहे होंगे आजकल रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर लोग अस्पताल में डॉक्टरी सलाह के लिए आते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये सभी ये जो कारण हैं, इनके मुख्य कारण क्या हुआ?
2: मुख्य कारण हुए कि आप भोजन के सभी अवयवों का संतुलित मात्रा में अपने भोजन में शामिल नहीं करना
1: जी।
2: जैसे आपके भोजन, हमारे भोजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, एक मेजर मैक्रो एलिमेंट होते हैं, एक माइक्रो एलिमेंट होते हैं, दोनों का समावेश यदि सही ढंग से ना हो, किसी की भी कमी रह जाए तो इसके कारण एक तो माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, या तो अति मोटापा या अति दुबला पतला होना और विभिन्न तरह की बीमारियां जिसका मैंने पूर्व में उल्लेख किया, जैसे रक्तचाप, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर वगैरह बीमारियों का होना।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी चर्चा की माल न्यूट्रिशन की, तो इसमें माल न्यूट्रिशन एक मोटे तौर पर हमें समझाएं कि किस तरह से हो सकता है?
2: माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन यदि गड़बड़ा जाए किसी का तो उसको माल न्यूट्रिशन कहेंगे
1: जी।
2: जैसे यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मोटा है
1: जी,
2: जो खाने के असंतुलित भोजन के कारण भी हो सकता है, बीमारी की वजह से भी हो सकता है
1: जी,
2: या अति दुबला पतला है, यह भी दोनों कारणों से असंतुलित भोजन एवं बीमारी की वजह से हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति का वजन, शारीरिक बनावट या सामान्य नहीं असामान्य है तो उसको अपनी पूरी तरह जांच करवा के देखना चाहिए कि खाद्य पदार्थ में असामंजस्य की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ चिकित्सक या चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए
1: जी। अगर एक प्रेग्नेंट वोमेन जो है, अगर वो संतुलित आहार नहीं लेती है तो क्या दिक्कत हो सकती है?
2: यदि वो संतुलित आहार नहीं लेती, यदि उसमें भोज्य पदार्थ में आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, तो बच्चों में खून की कमी, हड्डियों में कमजोरी, और यदि आयोडीन का सेवन सही ढंग से न करें तो बच्चा जो है वो जन्म से ही मंदबुद्धि हो सकता है। इसके अलावा और सभी भी विटामिन्स वगैरह हैं, सबका अपना इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं मैंने सिर्फ तीन का उल्लेख किया, मतलब तीन ही जरूरी नहीं है, सभी जरूरी है
1: जी। यानी कि हमारे भोजन में एक जो जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए।
2: बैलेंस डाइट का मतलब हुआ कि उम्र और समय, बीमारी की हालत या सभी चीज़ को देखते हुए जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है और उसमें भोजन की सभी अवयवों का शामिल होना नितांत आवश्यक है, वो भी संतुलित मात्रा में, तभी वो संतुलित भोजन कहे।
1: तो एक बार मुझे इस संतुलित आहार के बारे में डिटेल से बता दें।
2: संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर को सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक विकास हेतु, शारीरिक मतलब शरीर जैसे जो बच्चा होता है धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो ये शारीरिक विकास जो है इस विकास के लिए भी भोजन की ज़रूरत है और मानसिक विकास के लिए आपका उसके लिए भी कुछ कुछ अवयव भोजन के अवयवों की ज़रूरत है और इससे ये हमारे शरीर को विकास के अलावा हमारे शरीर के सभी अंग एवं जो टिश्यूज या उत्तक कहे जाते हैं उनके उचित पोषण के हेतु भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार के अभाव में हमारे शरीर में एक तो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, दूसरा यदि प्रोटीन की मात्रा कम हो तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है और यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो धीरे धीरे विभिन्न अपॉर्चुनिस्टिक या रोग हमारे शरीर में अपना घर बना ले सकते हैं और हम एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया संतुलित आहार के बारे में। तो ये बताइए कि लोग ये समझते हैं कि हमने जो प्रतिदिन का भोजन है दाल भात वगैरह जो भी हम खाते हैं वो हम खा लिए, तो क्या ये संतुलित आहार की श्रेणी में आता है?
2: जी नहीं, संतुलित आहार की श्रेणी में वह भोजन आएगा
1: जी
2: जिसमें कार्बोहाइड्रेट
1: जी
2: वसा
1: जी जैसे कार्बोहाइड्रेट में है तो हमें क्या लेना मुख्यतः?
2: मुख्यतः अनाज उसमें
1: जी
2: मुख्य स्रोत है अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए
1: जी।
2: वसा के

0: एक्टिव नहीं है तो मोटापा घर कर सकता है, वह भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन ही है
1: जी। तो और इसमें क्या क्या चीज़ हमें अपने खाना के साथ में और लेना चाहिए
0: पर्याप्त मात्रा में? पहले जिसे हम लोग मोटे अनाज करके नहीं ये लेते थे
1: जी,
0: उसका पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है
1: जी, मोटा अनाज,
0: मोटे अनाज का। इसीलिए मोटे अनाज को चोकर सहित, चोकर निकाल कर नहीं, चोकर सहित मोटे अनाज का आटा उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है। उसके अलावा चावल, चीनी वगैरह, गुड़ वगैरह, ये सब भी जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। दूसरा स्थान आता है वसा का, जो हमें तेल दो तरीके से मिलता है, एक तो नेचुरल शाकाहारी, जैसे आपके तेल नारियल हो गया, सरसों हो गया, तिलहन या दलहन जो कहते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें सरसों, तीसी वगैरह आ गए। और एक होता है मांसाहार, जिसमें मछली और मांस वगैरह मुख्य अवयव हुए, जिसमें आपको वसा प्रचुर मात्रा में मिलती है। मानसिक विकास के लिए वसा का समुचित प्रयोग होना आवश्यक है।
1: और खाने में क्या क्या?
0: और खाने में आपको फिर प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें सीम प्रजाति की जितने भी फल सब्जियां हैं, सीम, फ्रेंच बीन, चना, मटर, तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये सब आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी हैं, जिसमें दाल आ गए, सभी दाल आ गए, तो दाल और मांस, अंडा, मछली, ये सब जो है, ये आपका सोयाबीन वो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है, सोयाबीन, राजमा, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, जिनको अपने भोजन में शामिल किया जाना चाहिए।
1: तो सर फल वगैरह खाने में?
0: फल तो भोजन में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि फल में हमें बहुत से खनिज एवं लवण मिलते हैं, जो हमारे शरीर को विभिन्न उपापचय या मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, और बहुत से रोग प्रतिरोधक बनाने में, टिश्यू को मेंटेन करने में खनिज लवण का काम होता है। जितने भी आप जो कार्यविधि करते हैं, उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन चार अवयव ऐसे हैं जो आपके सेलुलर एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। देखने में तो ऐसे लगता है कि क्या करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उसका आदमी को शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो आदमी एकदम सुस्त पड़ जाता है, निढल पड़ जाता है, इतनी कमजोरी फील होती है कि उठ भी नहीं सकता। तो इससे आप समझ ही रहे होंगे कि एक सोडियम, एक लवण है, उसका हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंस है
1: जी। तो एक मोटे तौर पे हम ये कहना चाहें कि हमारे खान पान में, एक संतुलित आहार में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए।
0: विटामिन्स का भी होना जरूरी है, जिस पे हम लोगों ने बात नहीं की
1: जी।
0: लेकिन विटामिन्स का होना भी जरूरी है जी। क्योंकि कुछ विटामिन्स है जो शरीर के अंदरूनी उपापचय या मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं।
1: सर आपने बीच में कहा था कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, मतलब कि वो ख़राब हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, ये कैसे संभव होता है?
0: यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक, ज़रूरत से ज़्यादा बीमार रहने लगे, बार बार उसकी तबीयत खराब हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज्ड है
1: जी।
0: मतलब हमारी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई
1: जी।
0: भोजन संतुलित आहार लेना से ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसको कैसे पकाना है इसका भी ख्याल रखा जाए ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ लेते हैं उसको सही तरीके से साफ़ नहीं करेंगे, विशेषकर वैसे चीज़ जो ज़मीन के नीचे में फलते हैं, उनको बढ़िया से धो लेना और उनको एक दो बार धो करके तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बहुत से बीमारी होने का, इवन की मिर्गी होने तक का खतरा रहता है। एक कीड़ा पाया जाता है ज़मीन में, यदि वो चला गया सब्जी के साथ, कच्ची सब्जी या सलाद के साथ में, तो मिर्गी की बीमारी तक हो सकती है। इसीलिए भोजन को पकाने के पहले अच्छी तरह धो लेना और अच्छी तरह से पकाना ये ज़रूरी है। ऐसा बहुत से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन अनावश्यक पानी से धोने के बाद वो जो है पानी में घुल करके चले जाते हैं, क्योंकि पानी में घुलनशील विटामिन है वो, विशेष करके बी कॉम्प्लेक्स और सी
1: जी।
0: तो खाना बनाने के लिए, विशेष करके गर्भावस्था के दौरान या जब किसी व्यक्ति को खून की कमी हो, तो लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: आयरन

0: वो जब आप लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर को ये इनके प्रकार फायदा ही करेगा।
1: डॉक्टर साहब, हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर को कुछ खाद्य पदार्थ सूट नहीं करते हैं और हम खाए जाते हैं, उसमें जैसे कि आपने इतनी सारी बातें बताई कि संतुलित आहार में ये होना आवश्यक है, तो क्या ऐसा भी है कि हम उस चीज़ को खा रहे हैं वो हमारे लिए तो नुकसान हो रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए?
0: जैसे जब भी आपको ये पता लगे किसी चीज़ का भी अति सेवन, भोजन में सिर्फ एक कोई भी अवयव उसकी मात्रा ज़्यादा हो तो असंतुलित हो गया और वो शरीर को नुकसान करेगा और वो शरीर उतना ही रखेगा जितना उसको ज़रूरत है, लेकिन किसी कारण से बार बार उसको ओवरलोड देंगे तो आपका शरीर फिर बीमार पड़ सकता है, या इधर वो मोटापा की तरफ जाएगा या फिर हमेशा आपको पेट से संबंधित बीमारियां होती रहेंगी। भोजन के मामले में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि चाय या कॉफ़ी इसका सेवन भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप चाय या कॉफ़ी का सेवन भोजन के साथ साथ यदि करते हैं तो ऐसे बहुत से खनिज और लवण हैं जिसको ये अपने साथ बांध लेता है और वो शरीर से बाहर निकाल देता है। आपको लगता है कि हम तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दूध बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन यदि दूध के तुरंत पहले या बाद आपने चाय पी ली तो उसमें जो टैनिक एसिड वगैरह होता है वो कैल्शियम को अपने साथ बांध करके शरीर से बाहर निकाल देता है, जो आपके खाना खाने के बाद भी कैल्शियम की कमी आपके शरीर में बनी रहती है। ये सिर्फ कैल्शियम पे लागू नहीं होता, बहुत सा भोज्य पदार्थ में ऐसे चीज विटामिन या ये हैं उनको अपने साथ ही निकाल देता है। इसीलिए भोजन करने के तुरंत पहले या बाद में आप चाय का सेवन न करें।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे संतुलित आहार के बारे में?
0: संतुलित आहार नियमित लीजिए, संतुलित व्यायाम कीजिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बना के रखिए, पेड़ लगाइए और पानी का सही निस्तारण कीजिए।
1: जी, तो आपने हमारे श्रोताओं को संतुलित आहार पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर बी के सिंह, उनसे बातें कर रहे थे अवनी सिन्हा। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: इस संदेश के बाद कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

अभी आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मोहरा से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: अभी आपने सुना कुमार सानू के स्वर में फिल्म सर का ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इस संदेश के बाद सुनते हैं फिल्म दिल्ली 6 का ये गीत जावेद अली के स्वर में।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म बागी का ये गीत मोनाली ठाकुर और मीट ब्रो संजान के आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
2: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
2: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
2: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था
2: जी।
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
2: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
2: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है
1: जी। श्रोताओं, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
2: जी,
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारी आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
1: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
2: जी,
1: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
2: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
1: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
2: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
2: जी, तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न है,
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: CIET NCERT प्रेजेंट्स द प्रोग्राम द स्मार्ट मंकी।
3: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of ground nuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the ground nuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
1: The Smart Monkey, You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Recorded by Sangeet Kumar. Assistance in production, Jagabandhu Jana. Directed and produced by Ajit Horo. अभी आपने सुना कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।

0: कार्यक्रम शीर्षक है कालीबाई बंगा।
1: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
0: नमस्कार साथियों।
2: मेरा भी नमस्कार।
0: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
2: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
0: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
2: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
0: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
2: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
0: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
2: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
0: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
0: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
2: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
0: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
2: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे, परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

0: गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता? वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा।

0: भारी भीड़ जमा होने लगी। लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई, भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं और अब समय हो चला है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची का। इसे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त उषा जायसवाल और
1: मैं हूँ सुनीता। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और आपको कहते हैं
0: नमस्कार जोहार।
1: उषा जी, आप बताइए कैसी हैं?
0: एकदम अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ, तो लगता है ना इस बारिश में दोनों भीग भीग कर आए हैं। तुम थोड़ी सूख गई हो लेकिन मैं
1: नहीं, मैं सुबह जब आ रही थी ना, हाँ। बहुत ज्यादा बारिश थी, बहुत ही ज्यादा बारिश थी, लेकिन भीगी नहीं, अभी भी बाहर निकली थी तो बहुत तेज बारिश।
0: हाँ, अभी भी बारिश थी लेकिन हल्का, मतलब होता ना छाता लेने के बाद में भी थोड़ा सा भीगना ही पड़ता है क्योंकि तेज बारिश में। लेकिन बस ये हम सभी से कहना चाहते हैं कि इस बारिश में आप सभी भीगे लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखकर।
1: नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब भीगने की जरूरत है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है और मौसम की बात तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कुछ अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं, तो आज कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
0: बिल्कुल, देखो विचार तो हमेशा कोई भी हो वो अच्छे होते हैं क्योंकि वो सकारात्मक होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ा इंतजार कर लें तो वो फिर से हरी हो जाती है।
1: और धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कभी कभी हमने देखा है ना कि कभी कोई मुश्किल आए, हर किसी के जीवन में मुश्किल आती है, समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है, उस बीच में ना हम बहुत कभी कभी एकदम पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं,
0: हड़बड़ाने लगते हैं।
1: जैसे आपने कहा ना कि रेड लाइट पे जब ट्रैफिक रुकती है वैसे ही हमारा जीवन रुक गया। लेकिन जैसा कि आपने ये भी बताया कि थोड़ा धीरज धरते हैं तो हरी हो जाती है, तो यहाँ धीरज धरने का मतलब ये है कि अपने जीवन में उन मुश्किलों को, उन परेशानियों को हम देखें वो क्या है और उसका समाधान ढूंढे।
0: बिल्कुल, और उसके लिए शांत मन होना बहुत जरूरी है। और अगर आपसे उस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, अपने बड़े बुजुर्गों का साथ लें, अपने दोस्तों का साथ लें, ये ना कि मुझसे ये समाधान नहीं हो रहा और हम पैनिक हो गए और कुछ गलत कदम उठा लिए,
1: तो के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। और कहते हैं ना जो धीरज रखता है वही अपनी मंजिल पे पहुंचता है, तो फिलहाल हम भी धीरज रखते हैं, हमारे श्रोता भी धीरज रखते हैं, या कब ये गाना बजेगा, कोई गाना बजेगा हम सुनेंगे या इनकी बातें ही सुनेंगे, तो बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी, एक घंटा हम आपके साथ है लेकिन गाना भी आप सुनेंगे।
0: देखो सुनीता, बातें सुनना हमारी मजबूरी नहीं है और उनकी भी मजबूरी नहीं है, बस कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी और जानकारियां भी होंगी और वो हमारे साथ जरूर रहेंगे और इसके लिए हम भगवान से कुछ शक्ति भी मांगेंगे।
1: मैंने हमेशा हमेशा उन्हें यही कहा है कि हमारा जो आपका साथ है ना वो बस एक रेडियो, एक माइक के जरिए नहीं, हमारा और आपका साथ है दिल का रिश्ता है, और बहुत पुराना रिश्ता है और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे और गीत संगीत भी साथ में चलता रहे।

0: और अब सुनीता जोहरा जी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने सैनिकों के लिए ये शौर्य गाथा सुनते चलते हैं।
1: बिल्कुल।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: शौर्य गाथा के बाद हम अपने सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत करते हैं जोहार रांची कार्यक्रम में। और सुनीता, अब हम कुछ और जो अभी खास है उसके बारे में बातें करना
1: अभी
0: चाहते हैं।
1: पता है सबसे ज्यादा खास क्या है? बारिश।
0: वो खास नहीं है, अब तो आम हो गया है
1: हाँ बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: मतलब इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हर 2 दिन के बाद आपको लगेगा
0: हाँ,
1: अलर्ट
0: एक
1: आता
0: सूचना आ
1: रहेगा,
0: जाती है कि येलो अलर्ट है और तेज
1: ऑरेंज
0: बारिश
1: अलर्ट
0: का।
1: है, मतलब कितना ऑरेंज येलो रेड अलर्ट चल रहा है, हम लोग इसी में फंसे पड़े हैं। और फिर भी पता चल
0: देखो
1: कहीं तो बारिश और इसके वजह से बाढ़ तबाही सब मची हुई है, और लेकिन फिर भी आपको पता है जब भी मौसम विभाग का आएगा तो सामान्य से 10% बारिश कम हुई है, तो आखिर बारिश जा कहाँ रही है?
0: देखो
1: चलिए बारिश बारिश की बात
0: देखो
1: करते हैं ना,
0: बारिश
1: तो
0: की बात जब होती है ना, तो ये अगर अधिक बारिश हो रही है, येलो अलर्ट है, ऐसा पहले तुमने कभी नहीं सुना था कि येलो
1: कुछ
0: अलर्ट,
1: दिनों
0: ऑरेंज
1: से इस
0: अलर्ट,
1: तरह की
0: ये
1: बातें हो,
0: कुछ
1: हाँ
0: सालों से,
1: कुछ
0: दो
1: सालों
0: चार
1: से,
0: 8 सालों से हो रही है, और ऐसा पहले नहीं होता था। तो इसका कारण भी हम सब है ना,
1: बिल्कुल है
0: जो भी अलर्ट है ना, वो प्रकृति हमें अलर्ट कर रहा है, वो
1: हाँ।
0: रेड अलर्ट कर रही
1: वो
0: है।
1: मतलब समझिए कि ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की कि हमको अलर्ट मिल जाता है।
0: हाँ, और ये ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है ना, ये इंसान कर रहे हैं, और प्रकृति का पीछे से रेड अलर्ट है ताकि आप अब संभल जाओ, अब आखिरी हो चुका है,
1: अब तो सुधर जाओ,
0: अब तो
1: अब
0: सुधर
1: अपने जो
0: जाओ।
1: नेचर है, पर्यावरण है, उसको सही से कर
0: उसको,
1: लो।
0: हाँ उसको
1: और वैसे
0: संरक्षण करने
1: बात
0: में।
1: ऑरेंज येलो रेड की हो रही है तो ये भी बताते चले कि रांची में आज बारिश के, भारी बारिश के आसार हैं, और हवा भी साथ में चलेगी 40 किलोमीटर
0: चालीस
1: की गति से। अब आप
0: किलोमीटर
1: सोचिए आप करिएगा क्या?
0: इसलिए बस हो सके तो छोटे बच्चे, अगर बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है तो ना निकले, बड़े बुजुर्ग को भी कोई खास जरूरत नहीं है तो वो भी ना निकले, और कामकाजी लोग तो निकलेंगे ही, जैसे
1: थोड़ी
0: तुम और
1: सी,
0: मैं,
1: हाँ थोड़ी सी
0: है ना।
1: जानकारी हम अपने श्रोताओं को दें कि मौसम में आज क्या कुछ है हलचल।

0: राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अलग अलग हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट है।
1: और झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से गढ़वा, पलामू, लातेहार, मध्य झारखंड के लोहरदगा, गुमला के अलावा दक्षिणी हिस्से के सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश के बहुत मतलब भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना है। मतलब समझ लो कि गरज बरस सभी होंगे, आसमानी बिजली भी गिर सकती है और रफ्तार से, तेज रफ्तार से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने वाली है। तो इसलिए इस पूर्वानुमान को देखते ही सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप बाहर बहुत जरूरी नहीं है तो ना निकले। किसान भाइयों से भी ये अपील रहेगी कि अगर बहुत जरूरी नहीं है आज कुछ काम के तो वो ना निकले, क्योंकि गीले स्थान में रहने से बिजली जब गिरती है ना तो ये जो बिजली गिरने का जोन है हमारा झारखंड, यहाँ पर अधिक सुनने को मिलता है, तो वो इससे भी बच सकते हैं। अपने पशुधन को भी अंदर ही रखें, बाहर ना निकालें, तो स्वास्थ्य में भी उनकी रक्षा हो सकती है और खुद भी बच सकते हैं।
0: बिल्कुल। और पिछले 24 घंटों में रांची की बात कर ले तो 13 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आगे हम अपने श्रोताओं को बताएं कि बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा के उत्तरी भाग से होकर गुजरेगा
1: और ये पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में संताल और उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ जिलों को छोड़कर शेष झारखंड में बारिश होने का अनुमान है। रांची में बारिश होने का पूर्वानुमान तो था ही और हो ही रहा है, जैसा कि
0: लगातार
1: देख
0: हो रही है। कल पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश चल ही रही है। मतलब अभी जो है ना, बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आपने देखा होगा उषा जी, इधर कुछ दिनों में तो इस बारिश से कितने बड़े बड़े पुल बह गए और नेपाल की त्रासदी आप देख ही रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं और बाढ़ ऐसी आई, बाढ़ की पता नहीं कितनी जिंदगियां छिन गई हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हमें इतना तो सोचना चाहिए, इतना सचेत होना चाहिए कि प्रकृति से जितना कम खिलवाड़ करें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। आने वाली पीढ़ियां बहुत ज्यादा मुश्किल में रहेंगी, इसलिए अपने लिए तो आपने नहीं सोचा, उनके लिए।
1: हाँ, अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए भविष्य में पानी, जलवायु, पेड़ पौधे, हरियाली सभी कुछ बचाकर रखने की जरूरत है। और उसके लिए आज से ही सारी तिकड़मबाजी करनी शुरू करनी है कि आप छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने आसपास जरूर लगाएं, अपने प्रियजनों को पेड़ ही भेंट में दें ताकि वो इसे फेंकेंगे नहीं, उसे लगाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे।
0: तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हमारा प्राकृतिक संतुलन बना रहे तो इसके लिए प्रयास हम सभी को करना होगा। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब बारी है हमें प्रकृति को देने की।
1: बिल्कुल। और प्रकृति को हम तभी दे सकते हैं जब हम खुश रहें। तो चलो एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को हम सुनवाते चलें।
0: बिल्कुल।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार।

0: बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार हम फिर स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता
3: और मैं हूं उषा।
2: और उषा जी, आज बात कर लेते हैं आज से क्या कुछ खास है।
3: और आज खास है, भारत में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और इसे सप्ताह ही नहीं कहो, अगर पूरे महीने की बात करें तो पूरे सितंबर तक हम इसे मनाते हैं। है ना,
2: लेकिन 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित आहार के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
3: और इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पूरे सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
2: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है।
3: और उद्देश्य तो तुमने बता ही दिया ना कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो पोषण का महत्व होता है उसके लिए जागरूकता हम बढ़ाते हैं, ताकि जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास पर इसका प्रभाव भी पड़ता है।
2: साथ ही इसको मनाने का उद्देश्य यह भी है कि इस अवधि के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके बेहतरी उचित पालन पोषण के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाए।
3: और ये बता दें कि पोषण की जहां तक बात होती है ना, हमारे देश में अधिकतर लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं हमारी थाली।
2: बिल्कुल,
3: है ना। तो हमारी थाली में हर तरह के पोषण होने चाहिए। साग सब्जी, दाल चावल के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जानकारी अगर नहीं होती है तो सिर्फ कुछ कुछ चीजें हम उपयोग में लाते हैं और जिसके कारण कुपोषण हो जाता है।
2: थाली की बात की ना, तो एक डॉक्टर ने एक बार कहा था कि आपकी थाली में जितने रंग होंगे ना, आपके जीवन में उतने रंग भरेंगे।
3: बिल्कुल सही।
2: तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि रंग बिरंगी थाली आपकी हो और बहुत पौष्टिक हो। जरूरी नहीं है कि तला भुना खाए। अच्छी मौसमी साग सब्जी, फल, आहार, अंकुरित अनाज, ये सब अगर हम खाते हैं तो निश्चित मानिए हमारा पोषण अच्छा होगा। और जब हमारे बच्चों का पोषण अच्छा होगा तो देश, राष्ट्र, समाज सभी का विकास अच्छे से होगा।
3: और सुनीता, एक बात और बता देते हैं कि पोषण के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फल और महंगे अनाज को ही आप शामिल करें। अगर कहते हैं ना कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ,
2: क्योंकि दाल बहुत पौष्टिकता से भरपूर होता है और उसमें थोड़ी सी सब्जियां और टमाटर वगैरह डाल दें तो उसकी बात ही
3: पौष्टिकता बढ़ जाती है। हाँ, और तो, स्वाद में भी गुणवत्ता
2: तो
3: आ जाती
2: स्वाद
3: है।
2: हम भी अपने श्रोताओं के साथ चख लेते हैं।
3: चलो,
4: ये समझो और समझ

0: कैसा लगा सुनीता?
1: बहुत मजा आया। और
0: बस इसी तरह से सभी जो भी इस गीत को सुने हैं, तो ये सच्चाई भी यही है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए बस दाल रोटी ही काफी होता है।
1: हाँ, दाल रोटी से मतलब ये नहीं कि आप रोज दाल रोटी खाएं। हाँ। दाल रोटी का मतलब ये है कि आपकी थाली हो, सुपाच्य हो और आपको उससे पौष्टिकता मिले, आप स्वस्थ रहे, कहने का मतलब यही है। और खाने से जानते हैं हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हमें हमारे लिए फायदेमंद होती है। कहते हैं ना कि ये खाओ तो ये चीज सही होगा, वो खाओ तो वो चीज सही होगा, गाजर खाओ तो आँख सही होगी। और आंखें तो अनमोल है, हम सभी जानते हैं।
0: देखो सुनीता, भगवान ने ना हर चीज दुनिया में ऐसी दी है जो हमारे शरीर से कनेक्टेड है ना, इसीलिए उसके बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए। कुछ लोग को जानकारी है वो स्वस्थ रहते हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें कोई ना कोई परेशानी, डिफिशियंसी जो होती है ना, कमी होने लगती है। हाँ, और उसकी परेशानी होने लगती है। जैसे कि अब आंख को ही ले लो, अभी तुमने कहा कि गाजर खाओ तो आंख अच्छा होगा, लेकिन आंख अच्छा होने के लिए सिर्फ गाजर ही नहीं, उसके साथ में बहुत सारे चीज हैं जो हमारी आंख को स्वस्थ रखते हैं।
1: और आंखें जो है ना अनमोल होती है, कहते हैं ना आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है जिनकी आंखें नहीं है उनका जीवन कैसा है?
0: तो इसके लिए हमारा मतलब की कर्तव्य बन जाता है कि अपनी आंखों को एक समय के बाद अगर आप चाहें तो जो बिन आंखें अपनी जिंदगी जी रहे हैं उनको भी रोशनी दें कि वो इस सुंदर से दुनिया को देख सके।
1: और शायद इसीलिए भारत में राष्ट्रीय नेत्र दान पखवाड़ा यानी नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को नेत्र दान करने के प्रति जागरूक करना, ताकि मरने के बाद उनकी आंखें दो लोगों की दुनिया रोशन कर सके।
0: और ये भी पता होना चाहिए कि आंखें दान होती है तो पूरी आंखें नहीं, ऊपर का जो कॉर्निया होता है उसके दान की जाती है, जिससे कहते हैं ना कि बिना आंखों के वो मृत शरीर कैसा दिखाई देगा, तो उसमें भी कोई विकृति नहीं आती है ना। और बस ये जरूरी होता है कि जब आप दान करना चाहें तो आप पहले से इसकी जानकारी अपने परिवार को जरूर दे दें, ताकि ठीक मृत्यु के कुछ समय बाद तक में उसकी आंखें निकालकर और दूसरे को तुरंत प्रत्यारोपित की जा सके। और इसके लिए मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और डॉक्टर आते हैं और निकाल के ले जाते हैं, और आपकी जो यादें हैं वो ता जिंदगी जिंदा रहेगी।
1: और जिनकी आंखों को रोशनी आपकी आंखों से मिले, ये ना समझिए वो कितना आपको याद करेंगे। जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे वो आपको याद रखेंगे कि आपकी आंखों से वो इतनी खूबसूरत सी दुनिया देख रहे हैं। और नेत्र दान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं उषा जी। जैसे लोगों का कहना है कि आंखें निकालने से हम फिर बाद में अंधे हो जाते हैं, अंधे पैदा लेते हैं, तो ऐसा पुनर्जन्म जैसा तो कुछ होता नहीं है पहली बात। और दूसरी बात, ये सिर्फ वहम है कि आंखें निकालने से कुछ होता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि अगर आप अपनी आंखें मरणोपरांत दान करते हैं तो समझिए आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं।
0: और उसके बाद ये भी बात है ना कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, डायबिटीज है या फिर कोई दूसरी परेशानी है शरीर में, तो उससे आंखों का लेना देना नहीं है, है ना। आप कोई भी बीमारी में डॉक्टर से पूछ कर आप इसे दान कर सकते हैं, ताकि आपकी दी हुई ये नियमित पूरे संसार को देखने के लिए वो राजी हो जाएंगे और साथ ही साथ वो कितना धन्यवाद देंगे आपको और पूरे परिवार को, और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए अमर हो सकती है।
1: कहते हैं ना नेत्रदान महादान है। हाँ। इसे जरूर करिए और लोगों को भी जागरूक करिए। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: सुनीता, हम कितनी अच्छी बातें अभी कर रहे थे कि प्रकृति की दी हुई ये प्यारी सी नेमत हम दूसरे को भी अगर साझा करते हैं अपने नहीं रहने के बाद, तो इससे हम अपनी ढेर सारी खुशियां दूसरों को देकर जा सकते हैं।
1: और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो यहाँ के होकर भी नहीं यहीं के होकर हो जाते हैं, यहाँ के नहीं फिर भी यहीं के हो गए,
0: कुछ
1: हमेशा
0: वो कुछ दे कर गए हैं जिसे हम आज भी याद करते हैं।
1: तो आज है फादर कामिल भुल्के की जयंती। 1 सितंबर 1909 को उनका जन्म हुआ और 17 अगस्त 1982 को उनकी मृत्यु हुई। बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाले एक प्रसिद्ध और हिंदी साहित्यकार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य की सेवा को समर्पित कर दिया। और अब हिंदी पखवाड़ा भी शुरू हो गया है आज से।
0: और हिंदी पखवाड़ा में इनका ही नाम पहले लिया जाता है।
1: तो इसे हम भी इन्हें याद कर रहे हैं।
0: और 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम के रैम्स शेपल गांव में इनका जन्म हुआ था। और वे 1936 में जेसुइट मिशनरी के रूप में भारत आए थे।
1: इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से गणित में MSc करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA और PhD पूरा किया। उनके शोध प्रबंध में रामकथा उत्पत्ति और विकास के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी से प्रेम, भले ही उनकी मातृभाषा डच रही और फ्रेंच थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिंदी को कर्म भाषा बनाया
0: और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रमुख कृतियां उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी की रचना की और बाइबल के हिंदी में अनुवाद किया। सम्मान भी इन्हें मिला हिंदी साहित्य और शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
1: और फादर कामिल भुल्के हिंदी के बहुत पुरोधा विद्वान थे। और आज उनका जन्मदिन है, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ऐसे ही लोगों के बदौलत हिंदी आज ऐसे मुकाम पर है कि देश विदेश में इसे हम बड़े शान से जानते हैं, बोलते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा
0: है और हिंदी है हम।
1: हाँ बिल्कुल
0: है ना।

0: क्यों सुनीता, गीत सुनकर कैसा लगा?
1: बहुत मजा आया। खुशियां कहीं भी बिखरे अच्छा ही लगता है, और इंसान इतनी दौड़ती भागती जीवन में अगर थोड़ा खुश हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इसी और खुशी के बीच में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ।
0: एकदम, चलो मैं
1: आपको पता होगा कि क्या है।
0: ये मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी साझा डिजिटल अखाड़ा तैयार करेंगे, है ना खुशी की बात?
1: बहुत अच्छी।
0: ये पहला ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया और अफ्रीका लीला नगोमा म्यूजिक बैंड विन

0: द इंडिजीनियस कम्युनिटी के प्रयास से की जा रही है। ये सिर्फ डिजिटल मंच नहीं है बल्कि दो देशों की आदिवासी आत्माओं, भाषाओं, संगीत, कला और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाला एक साझा सांस्कृतिक सेतु का कार्य करेगी। और इसके लिए जानकारी दी गई है कि आदिवासी एकता को मजबूत करने, भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच दोस्ती सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना इसका उद्देश्य है।
1: यानी कि है ना,
0: हाँ, अखाड़ा में सभी लोग मिलकर आपसी प्रेम भाव तो जुटाते ही हैं, लेकिन अब दूसरे देशों के साथ में अगर ऐसे अखाड़ा बनाए जाएंगे तो फिर सोचो कितना अच्छा लगेगा।
1: और धीरे धीरे इससे बहुत लोग जुड़ेंगे, दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि अखाड़ा की संस्कृति क्या होती है और आदिवासी संस्कृति यहाँ की क्या है, बाहर के देशों की क्या है। तो एक मंच बन जाता है कि जहाँ हम एक दूसरे से अपनी चीजें साझा कर सकते हैं। मैं एक जानकारी दूँ आपको?
0: बिल्कुल।
1: आपको पता है कि मंगोलवासी, जहाँ मंगोल में बहुत ठंड पड़ता है, वो उन लोगों को कौन बचाता है? बताइए।
0: देखो, लोग तो चाहते हैं ना कि कुछ अच्छा मिल जाए जिससे हमारे को ठंड से बचाव हो जाए, है ना? तो कुछ अच्छा ही होगा।
1: बिल्कुल।
0: जो तुम बताओगी।
1: मंगोलिया की जो जलवायु है ना, बहुत ठंडी और कठिन जलवायु है। वहाँ जीवन आसान नहीं होता। वहाँ उत्तर के टाइगर क्षेत्र में तापमान बहुत कम होता है, संसाधन सीमित रहते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग गाय या भैंस या बकरी की जगह रेंडियर, जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं, उसका दूध निकाल कर पीते हैं और इसे दुनिया के अनोखे मिल्क के रूप में जाना जाता है।
0: बताओ, तो ये मंगोलिया वासी जो है ना, वो खोप्सबोल प्रांत के जंगली और पहाड़ी इलाकों में घूमते जीवन जीते हैं, है ना? और रेंडियर को मुख्य रूप से दूध, परिवहन और ऊन के लिए वो पालते हैं। दरअसल रेंडियर मिल्क को अनोखा इसलिए कहा जाता है कि ये आम डेयरी जानवरों से अलग प्रजाति का है और बहुत कम जगहों पर उपलब्ध होता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण ये जीवन यापन के लिए आदर्श है।
1: और जबकि इतनी कठिन जलवायु है वहाँ की, तो ऐसे में लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। और एक बहुत ही रोचक जानकारी रही बारहसिंगा के दूध के बारे में। और अब एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवा लेते हैं।

0: सुनीता, हमने तो बहुत अच्छी सी जानकारी अभी दी, लेकिन कुछ अच्छी जानकारियों के बीच में कुछ परेशानी वाली भी जानकारी लोगों को दे ही देनी चाहिए।
1: परेशानी नहीं, इसको बोलते हैं, इसको आगाह करना बोलते हैं,
0: जागरूक करना।
1: जागरूक किया जा रहा है कि अभी जो मौसम चल रहा है ना, इसमें बहुत तेजी से स्वाइन फ्लू, रेड फीवर फैल रहा है और बहुत लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जैसे भी आपको लगता है कि आपको बुखार है, बदन दर्द है, उल्टी के लक्षण है या कुछ ऐसी और जिससे आप थकान हो रही है, तो आप
0: सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो हाँ, तो संपर्क करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये एक दूसरे से फैल के पूरे परिवार को चपेट में ले लेगी और फिर सभी परेशान हो जाएंगे, तो फिर इसका निदान नहीं निकल पाएगा। इसलिए जैसे ही किसी एक को ऐसी परेशानी हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और खास करके जो बारिश के दिनों में ना बासी खाना और अपने घर के आसपास जो सफाई नहीं होती है, पानी जल जमा हो रहा है, इन सभी पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसी से मच्छर भी आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू के लिए जो बीमारियां फैल रही हैं, तो गंदगी से ही कोई भी बीमारी होती है। और पानी साफ हमेशा पिए, हो सके तो कुछ गर्म
1: और थोड़ा ध्यान देने की ये भी जरूरत है कि कोई भी दवा अपने से ना खाए, क्योंकि ये जो है ना हर बारिश के मौसम में फैलता है और इधर झारखंड में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो खुद से दवा लेने के बजाय अपने डॉक्टर को मिले,
0: जरूर मिले,
1: और उनसे जो दवा लिखते हैं वो खाएं और अपने सेहत का ध्यान रखें और साथ ही साथ जागरूक बने रहें। और बरसात में जो भी आपको प्रिकॉशन लेना है वो जरूर लीजिए। हम तो बस यही चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें आप सबका जो जीवन।
0: और अपने आसपास जो भी परेशानी हो एक दूसरे से साझा करें और साथ में जागरूक जरूर बने रहें, चाहे वो मौसम के प्रति हो, हेल्थ के प्रति हो या अपने रिश्ते के प्रति हो।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: जागरूकता ही जो कहा जाता है ना कि हमें आगे की ओर लेकर जाती है। तो आज बातें करते करते जो रांची का समय कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला,
0: तो फिर चलते चलते एक प्यारा सा गीत सुनाएंगे। और
1: बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम से मैं सुनीता
0: और मैं उषा विदा लेती हूँ।
1: कहते हैं
0: नमस्कार, जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जोहार रांची कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। हमारे श्रोता अपने फरमाइशी गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं सबसे पहले ये प्यारा सा नगमा अपने श्रोताओं के लिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे अभी, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है, आवाज यशदास और हेमलता की है।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार, महादेव घाट अमलेश्वर से थे डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। और अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस प्यारे से संदेश के बाद, हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

इस प्यारे से संदेश के बाद आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद कार्यक्रम में। आपने पसंद किया है सीआईडी फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है ओपी नैयर। आवाजें हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश, ललित प्रधान और देवेन। चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, वासंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। ग्राम पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा सुनिए।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर। फिल्म का नाम है एक बार फिर। गीतकार हैं विनोद पांडे और संगीतकार हैं रघुनाथ सेठ। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन बेगम इसरत, रुबीना आरिज अरहान, हमजा मुजम्मिल, हुमैरा सुमैरा और उनके परिवार के बहुत सारे साथी, कोकिलवारा ओराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल, नुजहत जहानाज, शेख टोली समस्तीपुर से शाहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां, रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा सुनिए।

श्रोताओं, अब हमारे श्रोताओं की अगली पसंद है। फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत। संगीतकार हैं ओपी नैयर और गीतकार हैं एसएच बिहारी। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और इस गीत को ही सुनना चाहा है निधि और शिल्पी ने भी। और साथ ही है कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, आइए हम अगला गीत आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद पर। इसे हमने लिया है राजकुमार फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत को सुनना चाहा है मगनपुर से अमजद अली अब्बास आलम और जातुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही और इमरान राजा।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजे हैं और आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार। दिन के 12 बज रहे हैं और यह वक्त होता है हमारे आपके साथ का, प्यार भरे विश्वास का, यानी कि हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का।
1: हाँ, और जिसे लेकर हाजिर हैं आज हम दो सखियां, मैं हूँ निधि और मेरे साथ है शिल्पी। और हमने इस कार्यक्रम को विभिन्न रंगों से सजाया है। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सुरीले गीत हैं और एक ऐसी चीज है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है ना जल्पी,
0: और वो है बहनों रंग बिरंगी थाली। बहनों, क्योंकि पोषण अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद होती है और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज से हम यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाएंगे।
1: हाँ, और बहनों हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, हमारे शरीर को मजबूत बनाने, बीमारियों से लड़ने और दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये भी है कि जो आप भोजन करती हैं वो संतुलित और पोषक हो, यानी पोषक तत्वों से भरपूर हो।
0: बिल्कुल निधि, और हम अक्सर सोचते हैं कि पौष्टिक भोजन का मतलब होता है कि महंगे फल खाना, महंगे सूखे मेवे या विशेष खाद्य पदार्थ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हमारे रसोई घर या हमारे बगीचे में ही कई ऐसे फल साग सब्जी छिपे होते हैं जो पोषण के खजाने से भरे होते हैं।
1: सही बात कही तुमने। सखियों, एक बात का ध्यान रखिए कि भोजन की जो थाली होती है ना, वो संतुलित होनी चाहिए। शिल्पी, तुमने बिल्कुल सही कहा कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारा भोजन काफी महंगा है या बहुत गरिष्ठ भोजन हम खाएंगे तो बहुत मजबूत बनेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे, लेकिन ये एक भ्रांति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे साधारण चीज हैं जो खाकर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे पहले तो भोजन की थाली संतुलित होनी चाहिए, यानी कि उसमें अनाज हो, दालें, दूध, दही, अंडा, क्योंकि ये जितने भी तरह तरह के जो पोषक तत्व हैं ना, ये सभी की पूर्ति हो जाती है इन सब के माध्यम से। और कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को बढ़ने में मजबूत सहायता करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जिनमें प्रोटीन होता है।
0: इसलिए हम खास करके हम जो माँ हम लोग होते हैं, बच्चों को शुरू से ही दाल खिलाने की आदत डालते हैं और दूध दही तो खैर बच्चे पसंद करते ही हैं। तो वही निधि, कहीं ना कहीं बच्चे मौसमी जो फल है खाने से आनाकारी करते हैं ना, तो भाई ये मौसमी फल
1: और हरी सब्जियों से भी
0: बिल्कुल
1: दूरी बनाए रखते हैं।
0: बिल्कुल, और विटामिन खनिज और फाइबर देते हैं, इसलिए साथ साथ हम ये सब तो खिलाते ही हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी हम लोग सावधानी नहीं बरतते, जैसे कि पानी भी हम शरीर में बच्चे कम पीना चाहते हैं,
1: लेकिन सिर्फ भोजन के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन पानी जो है वो भी संतुलित आहार का एक बहुत
0: हिस्सा है,
1: महत्वपूर्ण हिस्सा है,
0: इसलिए शरीर के लिए पानी बेहद जरूरी है और इसे कम नहीं समझना चाहिए। यदि आपने बहुत अच्छी बात कही, और भोजन में विविधता जितनी अधिक होगी सखियों, पोषण उतना ही हमारा बेहतर होगा।
1: हाँ, और थाली रंग बिरंगी भी होगी, जैसे कि ये तुमने बताया था, तो मौसमी फल जो है या हरी सब्जियां हैं उन्हें खाने के लिए जरूर प्रेरित करें बच्चों को, क्योंकि विटामिन की जो पूर्ति होती है ना शरीर में, वो इन्हीं से होती है, और विटामिन जो है वो हमें अनेक बीमारियों से बचाकर रखती है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखती है। तो अब फल और सब्जियां बच्चे अगर कुछ नहीं खाते हैं, तो आप उसका कुछ स्वरूप बदलकर उसे खिलाने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि इसमें खनिज और लवण तो है ही, साथ ही ये बहुत फाइबर भी देते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। और पानी की बात तो हमने बता ही दी शिल्पी, कि पानी भी बहुत जरूरी है, और खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिए, और दिन भर में करीब हम साधारणतः कहते हैं कि 8 या 9 ग्लास पानी पीना चाहिए, और पानी पीने से हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहता है, उसमें पानी की कमी नहीं होती।
0: और पानी की बात आपने कही निधि, तो सबसे अच्छी बात है कि बच्चे समझते नहीं कि हम कितना पानी पीते हैं, तो अगर हम उनका बॉटल किनारे कर देंगे, अगर ऐसा है कि हमको 4 बॉटल पानी पिलाना है, 4 लीटर, तो हम ये भी एक अच्छा मतलब तरीका है बच्चों को पानी पिलाने का,
1: वो नाप सकेंगे कि हमने कितना पानी पिया है।
0: बहनों, भोजन जो है पेट भरने का नाम नहीं है, बल्कि सही मौसम में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना,
1: ये बहुत जरूरी बात है शिल्पी, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो मौसम के हिसाब से भी होना, उम्र के हिसाब से तो होना ही चाहिए, लेकिन मौसम के हिसाब से भी होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो ये बरसात का मौसम है, तो इसमें है कि जिन चीजों से किन्हीं को सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, उनसे हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। और हर एक उम्र में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है शरीर को। तो हम आज बात करेंगे कि बच्चों की थाली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उनका शरीर जो है वो तेजी से बढ़ रहा होता
0: बिल्कुल।
1: है, और हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है भोजन में वो शरीर को बढ़ने में मदद करता है, साथ ही हमारे मस्तिष्क का विकास भी करता है। तो बच्चों की थाली में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सखियों, इसलिए बढ़ते उम्र के बच्चों के भोजन में घर का विविध पौष्टिक खाना को ऐसे आकर्षक तरीके से आप बना सकती हैं, उनकी थाली को सजा सकती हैं कि वो उन्हें लुभाए। कई बार होता है निधि कि हम खाने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं लेकिन देने का तरीका
1: अच्छा
0: तो
1: नहीं
0: बच्चे
1: लगता।
0: भागते हैं। तो भाई जिस थाली में उसे परोसनी है बच्चों की थाली में बहुत मायने रखता है। इसलिए बार बार हम तो ये ऐसा हमने अपने बच्चों के साथ किया निधि कि बच्चों की थाली को बदल बदल के खिलाना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना प्लेन थाली नहीं, उसमें कटोरा बना हुआ है छोटा सा, साइड में सब्जी की बनी हुई है।
1: और आजकल तो देखिए आप बहुत सारे डिजाइन बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थालियां भी आती हैं
0: बच्चों
1: के लिए,
0: उसे देखकर भी लुभाते हैं। और यानी कि डिजाइनदार थाली को चुने बच्चों के लिए, फिर देखिएगा बच्चे खाने के पीछे आप नहीं दौड़ेंगी बल्कि बच्चे दौड़ेंगे आपकी थाली के पीछे।
1: और एक बात और है शिल्पी कि जितने सारे रंग हो गए ना थाली में बच्चे उसकी तरफ इतना उतने ही आकर्षित होंगे। ऐसे भी हम कहते हैं कि जैसे लाल रंग है, पीला रंग, हरा रंग, ये सभी हमारे भूख को बढ़ाने में मदद करते हैं। और भोजन कराने के क्रम में उन्हें बताएं कि किस सब्जी में, दाल में क्या क्या है और किससे ऊर्जा मिलती है तथा वो क्यों जरूरी है। ऐसे तो बच्चे अपने पाठ्यक्रम में ये पढ़ते
0: हैं लेकिन
1: में?
0: फिर भी ये बहुत बढ़िया तरीका है कि अगर हम बच्चों को बताएंगे ऐसा। इसलिए मैंने सखियों को कहा और लिखा क्योंकि कई बार ऐसा होता है

0: रहे हैं या उपमा बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो छोटी छोटी बारीक बारीक काट कर हम उसमें डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक बात और सखियों से साझा करना चाहूंगी कि अक्सर होता है निधि कि हम महिलाएं तो सबका ख्याल रखते हैं, बखूबी निभाते हैं सारे रिश्तों को, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना निधि? और अपने कार्यक्रम में हमेशा हम अपनी बहनों को आगाह करते हैं कि भाई देखिए, जैसे आपके घर में बच्चे आपके जरूरी चीज हैं, बुजुर्ग जो हैं उनका हम ख्याल खूब रखते हैं घर में, लेकिन जब हम ही अस्वस्थ रहेंगे तो हम उनका ख्याल कैसे रख पाएंगे?
0: हाँ, क्योंकि ऐसे भी देखो शिल्पी, जो महिलाएं होती हैं उनके जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं, उनके जीवन के अलग अलग चरण होते हैं, तो उस वक्त उनका भोजन अलग अलग होना चाहिए ताकि उनको पोषण की मात्रा जो है वो घटती बढ़ती रहती है। अब जैसे देखो किशोरावस्था है, गर्भावस्था है, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, और उम्र बढ़ने के दौरान भी ये बहुत जरूरी है कि आप संतुलित भोजन करें, खासकर जो 50 वर्षों से ऊपर की महिलाएं हैं उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत होनी चाहिए, एक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इन सब बातों का हम साधारणतः ध्यान नहीं रखते, लेकिन इसके लिए जरूरी है उचित जानकारी की। तो अगर हमारी बहनों को उचित जानकारी होगी तो मैं तो समझती हूँ कि हमारी बहनें तो बहुत समझदार हैं, वो जरूरी इन सब बातों का ख्याल रखेंगी। तो जैसा ठीक ही बताया तुमने कि स्वास्थ्य को महिलाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ माता ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, पहली बात तो ये। और अगर हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तभी तो वे पूरे परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, यानी निधि, निधि के कहने का मतलब है सखियों कि अगर आपकी ये आदत है कि आप सबको खिलाकर खाती हैं, सोचती हैं कि ठीक है जो भी बचा है खा लूंगी, तो ये आदत को बदल डालने की कोशिश कीजिए, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। और हमारा शरीर जो है बहनों एक अनमोल उपहार है, और हमारे बच्चों के लिए, माता पिता को, पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों को छोटी छोटी बातें जो है वो बचपन से बताने की जरूरत है। तो थाली में रंग जितने ज्यादा, स्वास्थ्य के अवसर उतने ज्यादा, पोषण हो भरपूर तभी रहेंगे हम सभी खुश, है ना?
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। और भाई अब खुशी की बात आती है तो एक खुशी हमें और मिलती है कि जब हम अपने पसंद का कोई गीत सुनते हैं, या सखियों के पसंद का,
0: हमारी सखियां भी सुनती हैं और साथ साथ हम भी तो सुनते हैं, है ना?
1: तो चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: टू स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
2: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: तो शिल्पी, गीत तो हमने सुनवा दिया बहनों को। सचमुच हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और पंछी की तरह आजाद रहें, उड़ती रहें, है ना?
4: बिल्कुल। और बहनें स्वस्थ रहेंगी तो बच्चों को भी बताएंगी कि क्या सही है और क्या गलत।
3: बिल्कुल, क्योंकि जो माँ होती है ना वही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। तो आज हम इस विषय पर बहनों को बताना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं हमारे, उनमें नैतिक शिक्षा और संस्कार देना कितना जरूरी है।
4: बिल्कुल निधि। बहनों, आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। समय की भी यही मांग है कि हम भौतिक वस्तुओं को पा सकें ताकि एक सुविधाजनक जीवन हम बिता पाएं।
3: हाँ, और हम अपने बच्चों को भी भली भांति शिक्षित करना चाहते हैं ताकि वो किसी से पीछे ना रहें, अपने लक्ष्य को पा सकें, उनका भविष्य उज्जवल हो और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो सफल हो, सुखी हो।
4: बिल्कुल निधि। इन सब बातों के बावजूद कभी कभी हम अनेक समस्याओं से घिर जाते हैं, जैसे बच्चों का आजकल अति संवेदनशील हो जाना, सहिष्णुता की कमी, चीजों को स्वीकार करने में असमर्थ होना। बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां भी हासिल करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होना चाहिए। हाँ। और ये हर एक माता पिता की चाह होती है।
3: हाँ, देखिए, ऊंची ऊंची डिग्रियां तो वो ले ही रहे हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है, लेकिन जिंदगी में जो छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, जो जैसे संबंधों से जुड़ी समस्याएं हैं, भावनाओं से जुड़ी समस्याएं, तो उनसे वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो ये जो एक बहुत आम बात है जो देखने को हमें मिल रही है। और हम जो गुण विकसित करना चाहते हैं ना बच्चों में, ताकि उनका जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली बने, वे मुश्किल हालात में भी मजबूत बनकर खड़े रहें, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कार बिल्कुल छोटी उम्र से हम दें, क्योंकि अच्छे संस्कारों की जो मजबूत नींव होती है ना वो बचपन में ही पड़ती है और तभी बच्चों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो पाता है।
4: बहुत सही। और बच्चों की जो सबसे पहली गुरु होती हैं उसकी माँ होती हैं, हमने हमेशा इस बात को कहा, इसलिए महिलाओं को सहिष्णु, दयालु और समझदार होने की जरूरत होती है, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ निर्देश देकर सब कुछ नहीं सिखा सकते। हाँ। बहनों, है ना?
3: हाँ, और जब तक हम खुद उनके सामने एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत नहीं होते या उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, हमारी बातों पर उनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारी बहनें तो धैर्यवान और परिश्रमी हैं ही शिल्पी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी।
4: बिल्कुल, इसके बावजूद कभी कभी बच्चे हम देखते हैं ऐसे कि उदंड हो जाते हैं या उग्र हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बच्चा किस मानसिक परेशानी से वो गुजर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा है ना कि निधि, कि हम अपने बच्चों की बात हम ही समझ सकते हैं, ये हमारे अंदर
3: माँ सबसे करीब होती है,
4: ये एक गुण है कि हम अपने बच्चों की सब बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए हमें इस बात के लिए।
3: यूं तो जो माताएं हैं वो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे डर से या झिझक से बहुत सारी बातों को नहीं शेयर करते हैं, बताते नहीं हैं, तो उन्हें डांटने की बजाय या उन्हें बहुत कठोर निर्देश देने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि उनके साथ बैठकर हम सबसे पहले उनकी समस्या को सुने, और हमें बच्चों से मित्र जैसा व्यवहार रखना चाहिए, ना कि एक मालिक के रूप में कि हमेशा उन्हें आज्ञा देते रहना या कठोर निर्देश देते रहना, है ना?
4: फिर बच्चे भी ऐसा होता है ना कि वो हमसे किसी भी बात को छुपाने लगते हैं। बच्चों की दृष्टि से भी बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत होती है निधि, खासकर आजकल अगर हम स्कूल की बात करें तो उनका पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
3: हाँ, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई तो होती ही है, मॉरल साइंस, मॉरल वैल्यूज जो हम कहते हैं, लेकिन इस पर और भी हम अधिक बल दे सकते हैं। तो बच्चों को अनेक ऐसी गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान तो काफी नहीं है शिल्पी, तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं, ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें अगर हम बच्चों को सम्मिलित कर लेना, जैसे कि मोहल्ले के लिए कुछ छोटी सी योजना बनाना कि कैसे अगर किसी को मदद की

0: जरूरत है, तो हम मिलकर कैसे उसकी सहायता कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं?
1: और निधि ये भी बात है ना कि अगर अभिभावक वैसे स्वभाव को अपनाएंगे या हम किसी को करेंगे तो बच्चे भी शामिल हो जाएंगे
0: बिल्कुल,
1: उसमें।
0: वो अपने आप, क्योंकि
1: हाँ
0: माता पिता का अनुकरण करते
1: बच्चे
0: हैं
1: करते
0: बच्चे, ये
1: हैं।
0: तो बिल्कुल सही बात है। और जैसे छोटी सी लाइब्रेरी हमने बना ली मोहल्ले में ही, तो उसमें किताबें लाकर बच्चे देंगे, तो इस तरह से वो शेयर करना सीखेंगे आपस में और एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे और एक दूसरे की पढ़ाई लिखाई
1: बिल्कुल।
0: में
1: और
0: मदद भी
1: ये
0: करेंगे।
1: ऐसा एक वक्त होता था निधि कि जब हम कुछ अच्छी बुक खरीद कर लाते थे तो उसे हम अपने पास तक नहीं रखते थे बल्कि हमारी कितनी सहेलियां उसको पढ़ चुकी
0: मांग मांग
1: होती
0: कर ले
1: थी।
0: जाती थी
1: तो
0: और
1: ये एक
0: पढ़ती थी।
1: दौर था बहुत अच्छा, और ऐसा
0: बिल्कुल।
1: नहीं है कि हम अभी भी नहीं कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो अगर इस तरह का अगर हम अपना व्यवहार बनाएं तो बच्चे भी इस तरह से कर
0: ये
1: सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छी बात तुमने बताई शिल्पी, और मुझे याद आ गया क्योंकि हम लोग सब यही किए हैं कभी ना कभी, कि अगर कुछ अच्छी किताबें हमने खरीदी हैं तो उसका आदान प्रदान अगर बच्चों में हो ना तो बहुत अच्छा होता है।
1: और इस आदान प्रदान में कहीं हमारी किताब गुम
0: हाँ
1: ना हो जाए, इसके लिए मैं तो ये करती थी सबसे पहले अपना नाम लिख देती थी और किस डेट से मैं
0: हाँ
1: पढ़ना शुरू की।
0: और कभी कभी तो छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो एक बचपन का हिस्सा होता है,
1: बिल्कुल
0: उसका भी अपना एक अलग मजा है शिल्पी। तो बच्चे इन सब बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमें, मोहल्ले की बात तो हमने कर ली कि किस तरह से हम शेयर करना सीखते हैं, मदद करना सीखते हैं, और उसके ऊपर भी एक बात है कि वातावरण को संरक्षित हम कैसे करें। तो बच्चों को इन सब बातों के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे एक हमने छोटा सा नेचर क्लब बना लिया, बच्चों
1: बिल्कुल
0: ने एक क्लब बना लिया, ग्रीन क्लब बोलते हैं जिसको, कि किस तरह से हम पौधे लगा सकते हैं या गमलों की देखभाल कर सकते हैं। बच्चे एक दूसरे के घर में भी जाकर अपने
1: बिल्कुल
0: आइडियाज को बांट सकते हैं
1: बांट।
0: एक
1: और
0: दूसरे
1: सबकी
0: से।
1: देखिए पसंद अलग अलग होती है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को। अगर हम चाहें तो ऐसे अपनी अपनी पसंद के छोटे छोटे पौधों को लगाएंगे तो वहां हरियाली तो आएगी ही, साथ में एक अपना जब ये पौधा बड़ा होगा तो उसकी देख रेख करते हैं निधि। और छोटा सा बीज
0: बिल्कुल,
1: अंकुरित होकर जब
0: हाँ
1: आगे बढ़ता है तो
0: बहुत
1: कितनी
0: खुशी
1: सारी
0: मिलती है।
1: ख्वाहिशें रहती हैं कि भाई कहते हैं ना कि अगर ये वृक्ष जैसा हम पौधा लगाएंगे जैसी उर्वर भूमि उसे बनाएंगे पौधा भी वैसा ही होगा। तो बहुत सारी
0: हाँ
1: बातें हैं बच्चों को बताने के लिए, लेकिन उसके पहले है कि हमें अमल करना होगा इन
0: हाँ
1: सब
0: हमें
1: बातों
0: खुद
1: पे।
0: करना होगा, जैसे कि हम अगर वातावरण को संरक्षित करते हैं तो बच्चे भी खुद उसका अनुकरण करेंगे। और दूसरी बात है कि हम पशु पक्षियों के लिए हम अपने मन में दया रखें, करुणा का भाव रखें, उन्हें खाना दें, पानी दें, चिड़िया के लिए हम गर्मियों में पानी का बर्तन रखें, या उनके लिए घर जो बर्ड हाउस मिलता है
1: बनाता है लोग
0: उसे बनाकर टांग दें। तो इससे अगर हम, अगर माता पिता को वो करते देखेंगे ना, तो वो खुद भी इन सब चीजों को करने
1: बिल्कुल।
0: लगेंगे।
1: और आप देखेंगे कि अगर आप किसी दिन भूल गए चिड़िया को खाना देना तो बच्चे आपको याद दिलाएंगे कि भाई
0: बिल्कुल।
1: आज चिड़िया को खाना पानी नहीं पड़ा है। तो
0: हाँ
1: छोटी छोटी बातें हैं बहनों, लेकिन अगर हम उसे चाहेंगे तो अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो नैतिक शिक्षा की चिंता हमें बिल्कुल भी नहीं करनी
1: नहीं
0: पड़ेगी अगर हम खुद ही उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। और शिल्पी बातें तो अब हमने बहुत कर ली, तो अभी बहनें सोच रही होंगी कि ये तो बातें ही करते चली जा रही हैं, तो अब क्यों ना दूसरा गाना सुनवा दें बहनों को।

0: तो भाई बहुत खूबसूरत गीत निधि आपने सुनाया, और लगता है कि ये गीत शायद सखियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, है ना?
1: बिल्कुल। और अब हम भोजन की ही बात कर रहे हैं शिल्पी,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: क्योंकि
1: इसी
0: पोषण सप्ताह में आज सिर्फ
1: हाँ
0: यही बात होगी बहनों से,
1: तो
0: और
1: इसी
0: हमने
1: विषय को हम बढ़ाते हैं।
0: हाँ
1: तो अब हम जानकारी देंगे हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में, और ये भी भोजन का कितना महत्वपूर्ण अंग है ये हम जानेंगे। तो बहनों, रोजाना की थाली को तो रंगीन हम बनाए रखना ही चाहते हैं, और हमारी कोशिश भी यही होती है।
0: लेकिन निधि, सिर्फ चावल दाल, कभी कभी होता है ना कि हम सिर्फ चावल दाल सब्जी सोचते हैं कि हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि मौसम के अनुसार भोजन में हरी सब्जियों को शामिल करें, यानी कि जिस मौसम में, जैसे अभी बरसात का मौसम है, जितनी सब्जियां मिल रही है कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम बाजार से सब चीजों को खरीद करके छोटे छोटे मात्रा में लाएं।
1: और भोजन के साथ साथ एक सलाद की थाली तो होनी चाहिए, है ना? जिसमें सलाद के जितने भी सब्जियां हैं हम जानते ही हैं, जैसे ये हो गया आपका बीटरूट हो गया, गाजर, मूली, जो भी मौसम के हिसाब
0: बहुत
1: से
0: हाँ
1: मिल रहा
0: हाँ
1: हो, तो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। कच्चा टमाटर जो कि बहुत सेहतमंद है,
0: फायदेमंद है।
1: वो सब हम शामिल करें। तो सलाद की थाली इसकी आदत हमें डालनी चाहिए बच्चों को, कि पहले उसे खाने की जरूरत है। और रंग बिरंगी भी रहेगी थाली हमारी, तो बच्चे
0: और
1: भी
0: ये
1: खुश
0: बात
1: होंगे।
0: कहीं ना कहीं सच है निधि, कि अगर आप भोजन कितना भी बनाती हैं और सलाद नहीं है तो अधूरा लगता है,
1: अधूरा लगता
0: लेकिन
1: है।
0: जब आप उसको बनाएंगी, थोड़ा सा नींबू अगर डाल देंगी, तो देखेंगे कि खाने का स्वाद ना
1: स्वाद बढ़
0: बिल्कुल
1: जाता है,
0: एकदम अलग सा हो गया।
1: क्योंकि ऐसा ये भी माना गया है, और ये बात भी सही है कि ये जो सलाद हम खाते हैं ना, वो भूख बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम सलाद खाते हैं, यूं तो साथ में भी हम खाते हैं। और जब साग का मौसम होता है शिल्पी, तो साग हम हमेशा ही
0: हमेशा
1: बनाते हैं,
0: बनाते
1: इतने
0: हैं,
1: सारे जो होते हैं साग। और थोड़ा बनाना उसे वक्त लगता है बनाने में, लेकिन एक बार जब बन जाए तो बहुत ये फायदेमंद
0: बहुत।
1: होता है
0: और
1: हमारे
0: निधि,
1: लिए।
0: साग की बात आपने कही, तो हमारे झारखंड में इतने तरह के साग मिलते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सारे चीज को लाएं और उसे घर पे बनाएं।
1: हाँ, तो हम छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो बच्चे भी खाना पसंद करेंगे, खाने में रुचि लेने की कोशिश करेंगे, है ना? और शिल्पी, अब बातों बातों में वक्त हो गया है कि अब हम बहनों से विदा लें। तो हम बताना चाहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। तो सखियों, अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखियों निधि और
0: शिल्पी को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। इसके पहले हमारे सैनिकों के लिए ये शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: फट पड़े भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत सिलसिला फिल्म का। आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, धुन बनाई है शिव हरि ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिए गोपी किशन के फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार की और कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं बेमिसाल फिल्म से। संगीतकार हैं आरडी वर्मन और गीतकार हैं आनंद बख्शी, आवाज लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आप फिल्मी नगमे सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं, ढिशकियाओं, यह है फिल्म का नाम और गीत लिखा है इस फिल्म के, इस गीत को शकील आजमी ने, धुन बनाई है मिथुन ने और आवाजें हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की।

इसी प्यारे से गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार थोड़ी ही देर में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to

0: dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. More from our correspondent.
1: Addressing the SEO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, wars and conflicts are not a solution to any problem, and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy. The Prime Minister said, India supports all efforts that connect markets, facilitate trade, and open new avenues for development. However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
0: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period the previous year. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई 7.8% ग्रोथ देश खुशियों से भर गया देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है दुनिया युद्ध में डूबी हुई चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही विश्व संकटों से घिरा हुआ है सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही उसके बावजूद भी
0: Union Minister Nirmala Sitharaman has said India has shown that it can adjust to changes in the global economy without allowing its growth to be derailed. In an interview, Ms. Sitharaman described India as a vibrant and responsive economy capable of managing external challenges. She also highlighted India's recorded growth of 7.8% in the first quarter of the 2026-27 financial year. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today held a meeting with his German counterpart, Carsten Schneider, in New Delhi. The meeting was held on the sidelines of the 4th Indo-German Environment Forum. During the meeting, both sides had extensive discussion on matters related to industrial decarbonization and biodiversity conservation, with particular focus on wetland conservation. In a social media post, Mr. Yadav said the forum is opportune as the partnership between India and Germany continues to witness an unprecedented upward trajectory. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will inaugurate the hub and spoke international flight operations at the Sardar Vallabh Bhai Patel International Airport in Ahmedabad this evening. The inaugural Easy Connect service, operated by Air India's flight AI-1121, will depart from Ahmedabad, carrying passengers connecting through Delhi to several global destinations. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. Meanwhile, the Indian Embassy in Kathmandu has shared details regarding the identification and repatriation of mortal remains of victims of the recent flash floods in Nepal. Akashwani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर दिया बल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा देश का रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का दिल्ली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन, पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी शामिल, जल सुरक्षा का तैयार होगा रोडमैप। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी, संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने पर जोर। और भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने झारखंड में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की, खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, लोगों को किया गया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए। जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
3: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के द्वितीय वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। जल शक्ति मंत्रालय सहकारी संघवाद को मजबूत करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और केंद्र राज्य के घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से परिणामों में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में 2 दिन के विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस आयोजन में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कंपनी के प्रदर्शन को सुधारने और मुनाफे में लाने का निर्देश दिया। श्री कपूर ने झरिया के अग्नि प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षा तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल में 4 महीने के बच्चे की मौत के बाद शव वाहन नहीं मिलने पर प्लास्टिक बैग में शव ले जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को मामले की जांच कर 4 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी हो गई है। यह योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन

0: उम्मीद के साथ नई टीम का चुनाव करते हैं कि आने वाले समय में व्यापारियों की समस्या और उसके निदान के लिए एक सशक्त टीम बनेगी।
1: चुनाव में बहुत एक्टिवली पार्ट लेते हैं इस उम्मीद से कि आने वाले वर्ष में हम लोग कुछ अच्छा व्यापार जगत के लिए कर सकें। नई टीम आए और नए ऊर्जा से काम करे और हमारे इस राज्य के हित में, व्यापार हित में एक अच्छा काम करे और हम लोग व्यापार में तरक्की पूरे प्रदेश में करें।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआत के कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर था। रांची में जिला परिवहन विभाग ने प्राइवेट स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान ओवरलोडिंग कर बच्चों को ले जाने वाले कई वाहनों पर कार्रवाई की गई। डीटीओ अखिलेश कुमार ने इसे बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मानते हुए वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी।
2: सुबह 7 बजे से ही हम लोग अभियान में निकले हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल वैन इत्यादि की जांच कर रहे हैं। जो भी ओवरलोडिंग है उसकी तो फाइन काट ही रहे हैं, और उसमें जो भी उचित दंड है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वो दंड शुल्क हम लोगों ने अधिरोपित किया है। जो वाहन चालक है, स्वामी है, उनको हम लोग वार्निंग भी दिए हैं कि नेक्स्ट टाइम से गलती होगी तो वो वाहन जब्त की जाएगी।
0: झारखंड में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने सभी जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों के दौरान जल क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में कम से मध्यम स्तर की अचानक बाढ़ का खतरा रहने की संभावना है। इधर लगातार हो रही बारिश से राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण खरकाई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बार फिर सतर्क रहने की अपील की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: खरकाई नदी का जलस्तर 137.7 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से करीब 8.7 मीटर अधिक है। गम्हरिया के गजिया बराज के सभी 15 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं उड़ीसा स्थित खरकाई डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे नदी और जल स्रोतों के किनारे जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां।
0: इधर पलामू में सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर दिया बल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, देश का रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का दिल्ली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन, पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी शामिल, जल सुरक्षा का तैयार होगा रोड मैप। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी, संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने पर जोर। और भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने झारखंड में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की। खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, लोगों को किया गया अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अनुरंजनी कार्यक्रम में उपशास्त्रीय संगीत। हमारी आज की कलाकार हैं डॉक्टर अनीता सेन, इनसे आप सुनेंगे बंदिश और टप्पा। तबले पर संगत दे रहे हैं ओमकार गुलवार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरंजनी कार्यक्रम में उपशास्त्र संगीत। कलाकार थी डॉक्टर अनीता सेन। इनसे आप सुन रहे थे बंदिश और टप्पा। तबले पर संगत कर रहे थे ओमकार गुलवाड़ी। सारंगी पर लियाकत अली खान। फ्लूट पर रेणु मजुमदार और तानपुरा पर अन्ना जोशी और त्रिगुण जोशी। और इसी के साथ आज का अनुरंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत। हमारी आज की कलाकारा है फाल्गुनी पाठक। इनसे आप सुनेंगे कुछ गीत। पॉप संगीत हम आपको सुनवाएंगे। लीजिए, सबसे पहले सुनिए नवाब आरजू की लिखी ये रचना।

फाल्गुनी पाठक से अगली ये रचना सुनिए। ललित की लिखी ये रचना है और आवाज फाल्गुनी पाठक की।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक से कुछ गीत, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, और अब श्रोताओं दोपहर के 2 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार और मिड डे न्यूज थोड़ी ही देर में।

0: है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4,000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12,000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग

0: भाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है।

0: उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
1: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविष रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम के आगाज में आइए सुनते हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए शौर्य गाथा।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: हमारी भारतीय सेना, इनका हम जितना गुणगान करें वो कम है, इनके शौर्य का जितना हम प्रशंसा करें वो हमारे लिए कम है। हम अपने फौजी भाइयों के लिए एहसानों तले दबे हैं, वो हमारे देश की हिफाजत करते हैं और देश की हिफाजत की कीमत बहुत बड़ी है। कई बार हमारे ये भाई तिरंगे की शान बचाते बचाते खुद उसे तिरंगे में लिपट कर घर वापस आते हैं। उन माताओं को नमन है जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया, उन बहनों और पत्नियों को नमन है जिन्होंने अपने सिंदूर और राखियों का बलिदान दिया। हमारे ये फौजी भाई हमेशा हमारे दिल में बसे हैं।

हमारे फौजी भाइयों का इस कार्यक्रम में हमेशा से स्वागत रहा है। हम उनके जोश को बढ़ाने के लिए और उन्हें दिल से सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम में उन्हें वैसे ही गीत सुनाते हैं जो उनको पसंद हो, क्योंकि उनके हर एक खून की हर एक बूंद पर देश का प्यार बसा है। बलिदान के लिए बहाना उन्हें बार बार चाहिए। हमेशा उनके दिल में यही एक बात गूंजती है, माएं तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आंच आए तो हमें तो पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना।

हमारे फौजी भाई हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनके लिए ये देश धरती सुनहरी है, इनके लिए ये अंबर नीला बहुत प्यारा है और ये मौसम हमेशा उनके लिए रंगीला होता है। और ऐसा देश ही मेरा है।

0: जी हाँ, ऐसा ही हमारा देश है और इसी देश की रक्षा के लिए हमारे सभी फौजी भाई हमारी सीमाओं पर तैनात रहते हैं और हम उनके हौसला अफजाई के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और इसी के साथ हम उन्हें नमन करते हैं और ये जय भारती कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर के खंडपीठ ने वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी देते हुए अगली सुनवाई 24 सितम्बर तय की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सहकारी संघवाद को मजबूत करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और केंद्र राज्य के घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से परिणामों में तेजी लाने के लिए आज से नई दिल्ली में 2 दिन के विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बैठक में जल जीवन मिशन समेत अन्य पेयजल योजनाओं और स्वच्छता अभियानों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। झारखंड और बिहार की पुलिस ने 18 लाख रुपए के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के खिलाफ संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। पलामू और औरंगाबाद पुलिस की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। पलामू के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि पलामू, चतरा और गया के इलाकों में सुरक्षा बल नितेश और उसके दस्ते की तलाश में लगातार छापेमारी कर रहे हैं।
2: जो माओवादी हैं उनके विरुद्ध लगातार तीनों जिलों में प्रमंडल में अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप अब इनकी संख्या नगण्य रह गई है और वहां पर जो हमारी जिला बल है और जो अतिरिक्त जो हमारी विशेष फोर्सेस हैं उनको भी वहां पर समय समय पर लगाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोगों को आसूचना प्राप्त हो रही है उसको लगातार हम लोग चेस कर रहे हैं।
1: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज शाम 4 बजे रांची स्थित निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 2 और 3 सितंबर को रांची में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी साझा करेंगे। इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य विषय वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्ट्रस रखा गया है। जामताड़ा जिले के 10 केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। शिविर में मतदाताओं की दावा आपत्तियों की सुनवाई हो रही है, साथ ही छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है।

0: भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर जारी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आज 9वें दिन धनबाद पहुंची। बलियापुर में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने युवाओं से पढ़ो और लड़ो के नारे को बुलंद करने का आह्वान किया। उन्होंने पेपर लीक पर रोक लगाने और नौकरी की दुकान चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुमका जिले के हंसडीहा और नोनीहाट बाजार में पुलिस ने नकली ब्रांडेड चप्पलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग दुकानों में छापेमारी कर 422 जोड़ी नकली चप्पलें बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य में तेज बारिश जारी है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटों में अचानक बाढ़ आने की संभावना व्यक्त की है। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: देवघर जिले की मुस्कान और मौसम कुमारी का चयन अंडर 14 और अंडर 19 नेशनल वॉलीबॉल टीम के लिए हुआ है। खेलो झारखंड में शानदार प्रदर्शन करने वाली इन खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बीच यह मुकाम हासिल किया। मुस्कान के पिता ऑटो चालक हैं, जबकि मां सिलाई कर उनके सपनों को उड़ान दे रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
0: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी। श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने

0: नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकनाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
1: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
0: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकनाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
0: जी,
1: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
0: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
0: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
0: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
0: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
1: हे लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
0: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
0: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
0: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
0: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
6: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
3: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम My Name।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।

0: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
3: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
2: हाउ आर यू?
4: हैप्पी बर्थडे स्टीफन। थैंक यू।
5: कांग्रेचुलेशंस।
4: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
2: ओह फाइन फाइन।
4: थैंक्स फॉर कमिंग इन। प्लीज कम इन।
3: यस यस। व्हाई नॉट?
2: कम। जॉन, प्लीज कम हियर।
3: ओह श्योर।
4: जॉइन अस फॉर अ ड्रिंक प्लीज।
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: <पुछीं। laughs>

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया।

0: पीसेस?
1: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
1: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
0: नहीं नहीं,
1: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
0: ओह गॉड,

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन

0: उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी can now move around independently and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
5: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
6: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
7: नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
10: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उमंग कार्यक्रम, प्रायोजक थे NCERT। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे थे और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम में कुछ प्यारे प्यारे गीत। तो इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं सबसे पहले अनुपमा फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। कैफी आजमी का लिखा ये गीत है और हेमंत कुमार का संगीत, आवाज आशा भोसले की।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत है और मदन मोहन का संगीत। फिल्म का नाम है मनमौजी, आवाज लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं दूसरा आदमी फिल्म से। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं राजेश रोशन। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं बरसात फिल्म से। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आवाज लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं शोर फिल्म से। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे शोर फिल्म का ये गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा था इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं पवित्र पापी फिल्म का। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार भी प्रेम धवन ही।

चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल ले दूंगा तू जो मांगे एक बारिश मक्के चल जरा लचक लचक।

0: पवित्र पापी फिल्म का भी आप गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। और इसी के साथ आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और इस समय 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं प्रियंका। प्रधानमंत्री की सलाहकार तरुण कपूर 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंची हैं। आज उन्होंने झरिया मास्टर प्लान के तहत बिलगड़िया पुनर्वास स्थल का निरीक्षण किया और विस्थापितों से सीधा संवाद किया। श्री कपूर ने बिलगड़िया को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करने और वहां रोजगार के लिए टेक्सटाइल यूनिट स्थापित करने की योजना पर जोर दिया। राज्य की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हजारीबाग का दौरा कर मत्स्य पालन योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मुनका बगीचा में बायोफ्लॉक तकनीक से हो रहे मछली उत्पादन की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि यह आधुनिक विधि युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और सरकार मत्स्य उत्पादकों को हर संभव मदद देगी। लोजपा आर ने विकास रंजन सिंह को झारखंड का नया प्रधान महासचिव नियुक्त किया है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पासवान और झारखंड प्रभारी अरुण भारती की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई। पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने और प्रदेश में विस्तार के लिए सौंपी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले आज जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने गुमला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जिले के 730 पीडीएस दुकानदार पूरी ईमानदारी से राशन वितरण कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें मानदेय और कमीशन नहीं मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के मोहम्मदगंज और कोशियारा स्टेशन के बीच भारी बारिश के कारण डाउन रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। सुरक्षा के मद्देनजर इस रूट पर 2 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। आहार का पिंड टूटने से पटरी पर पानी आ गया था, जिसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। और कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह की बीती रात ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। वे मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। रात करीब 12:30 बजे तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं क्रीड़ा जगत कार्यक्रम। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर रेखा पाठक और अमित अखोरे का, और प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: क्रीड़ा जगत के आज के संक में दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अमित, आपका भी स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार रेखा, और कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों आज हम हॉकी की बात करेंगे क्योंकि महिला और पुरुष हॉकी टीम दोनों ही टीमें बाहर हो गई हैं वर्ल्ड कप से। लेकिन इस टीम का सफर कैसा रहा, शुरुआत कैसी रही, टीम ने क्या किया, कहाँ कमियां रही, कहाँ उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, इस पर बातचीत जरूरी है क्योंकि हम विश्व कप की दौड़ से बाहर हो गए।
1: और एकाएक कहेंगे एक तरह से कि हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पुरुषों के खेल ने खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन युवा महिला ब्रिगेड ने उम्मीद जगाई है। और जो अगली चुनौती है एशियन गेम्स की है, और महिला ब्रिगेड ने पांचवां स्थान पाया। और एक तरह से कहेंगे कि प्रदर्शन पिछले 20-22 साल के प्रदर्शन को,
0: 50 वर्षों में भारतीय महिला टीम का, महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन सुधरा है। पांचवें स्थान पर रही, यंगस्टर्स हैं, नई पौध, उन्होंने नया जोश दिखाया और शानदार ऐतिहासिक प्रदर्शन भी रहा। 5 मैचों में से सिर्फ एक में उन्हें हार मिले, तो महिला टीम अमित ज्यादा स्ट्रांग नजर।
1: हाँ, महिला टीम स्ट्रांग रही, लेकिन पुरुष टीम का प्रदर्शन बिल्कुल सही नहीं रहा। पुरुष टीम का
0: पुरुष टीम ने भी अच्छी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर दिखता है। मुझे भी लगता है जब खेल देखें आप तो आपको लगेगा कि कहां कहां हमारी टीम गलतियां करती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि लचर डिफेंस और फील्ड गोल की कमी के कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।
0: एक खेल प्रशंसक होने के नाते जब भी मैं खेल देखती हूँ तो भारतीय टीम में एक कमी मुझे दिखती है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ हॉकी की, लेकिन जब पासेस देते हैं ना तो ये लोग, इन लोगों के पासेस इतने लॉन्ग पासेस होते हैं और इसी में बीच में बॉल इंटरसेप्ट होता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि
1: वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता।
0: हमारी टीम की खामियां उजागर होती है। लेकिन और क्या क्या बात है?
1: बिल्कुल रेखा, और कहेंगे कि भारतीय पुरुष टीम ने निचली रैंकिंग वाली टीमों जैसे वेल्स और पाकिस्तान को तो हराया, लेकिन इंग्लैंड, नीदरलैंड और अर्जेंटीना जैसी ऊंची रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ तीनों मैच उन्होंने गंवा दिए। 5 मैचों में टीम ने 16 गोल खाए और 2010 के बाद किसी एक वर्ल्ड कप संस्करण में भारत का ये सबसे खराब डिफेंस था। और बहुत सारी बातें थी रेखा इस तरह के खराब प्रदर्शन के पीछे।
0: ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है तो दूसरा खिलाड़ी उस पर डिपेंड हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिखा हमारी टीम में भी। कप्तान हरमनप्रीत के 6 ड्रैग फ्लिक गोल ना होते तो नतीजा और भी बदतर होता।
1: बिल्कुल।
0: और पूरी टीम की निर्भरता आमतौर पर यही हो गई कि हरमनप्रीत जो करेंगे वो करें।
1: और यहाँ यहीं पे परेशानी होती है जब पूरी टीम एक ही खिलाड़ी

0: पे निर्भर रहे और वो खिलाड़ी एक तरह से समझेंगे कि जिम्मेदारी के एक बोझ से दबा होता है।
1: उसके बाद उनके साथ मुश्किल ये हुई ना कि पिच का खिंचाव हो गया, उसका असर ये हुआ अमित कि खेल तो खराब हुआ ही और उनके पिच में खिंचाव की वजह से दूसरे दौर में खेले लेकिन मैच प्रभावित हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सीनियर्स भी नहीं चले जो कि अमित रोहिदास जिनका खेल काफी प्रशंसनीय है, उनका भी प्रदर्शन साधारण रहा। स्ट्राइकर मनदीप सिंह एक भी गोल नहीं कर पाए, 30 के पार पहुंच चुके मनप्रीत की मुश्किलें मैदान में दिखी और लगातार वो उनकी कंटिन्यूटी नजर नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और टॉप 8 टीमों में भारत ने 5 मैचों के बाद सबसे कम फील्ड गोल किए और विपक्षी डी सर्कल के अंदर खिलाड़ी स्कोरिंग पोजिशन बनाने में नाकाम भी रहे। अधिकतर ऐसा होता है डी में जब गेंद घुस जाती है तो जिस तरीके का खेल होता है तो वहां पर पेनल्टी कॉर्नर का मौका मिलता है लेकिन ये भी बनाने में नाकाम
0: हमारे
1: खिलाड़ी। तो ये मुश्किलें दिखी, ये कमजोरी दिखी लेकिन वही महिला टीम एज यूजुअल महिलाओं की टीम काफी सशक्त होती है और उन्होंने काफी मजबूत टीमों को भी रोका है।
0: सही कह रेखा कि 5 मैच में सिर्फ 1 हार और 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्हें मिली। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन शॉट रखी। 1974 में चौथे स्थान के बाद 2026 में 5वां स्थान भारतीय टीम को मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1978 में 7वां और 2018 में 8वां स्थान भारतीय टीम को मिला था। और अगर बहुत सारी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो भारत ने दुनिया की चौथे नंबर की टीम चीन को 2-2 पे रोका, इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित 0 ड्रॉ खेलकर अंतिम 8 में प्रवेश किया, गोलकीपर बीचू देवी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम पलों में मैच जीताऊ सेव किया, साक्षी राणा, सुनीलिता टोप्पो, दीपिका और ईशिका जैसी युवा खिलाड़ियों ने दबाव के पल में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अगर आप चाइना के साथ मैच देखे होते अमित, इतना शानदार मैच था जो 2-2 से ड्रॉ पर रहा तो धड़कने रुकने वाली,
0: खासकर चाइना जैसी टीम के खिलाफ।
1: हम पूरी टीम की बात करें, महिला पुरुष दोनों ही टीम की बात करें तो यहाँ पर टीम का कल्चर बदला है। हमारी टीम के कोच हैं जेन के शॉपमैन और हरेंद्र सिंह और इनके कार्यकाल की वजह से महिला टीम में स्थिरता आई है, आत्मविश्वास लौटा है। सीनियर खिलाड़ी सविता पुनिया का मानना है कि टीम का माहौल अब पूरी तरह से स्वस्थ और पारदर्शी हो चला है जहाँ हर खिलाड़ी को खुलकर बोलने और सीखने की आजादी मिली है, इस वजह से ये रिजल्ट भी दिखा।
0: बिल्कुल, देखिए एक बात तो है कि जब आप खिलाड़ियों को अपने मन की बात रखने का मौका देंगे तभी उनका मनोबल अच्छा रहेगा और उसका असर उनके परफॉर्मेंस पे पड़ता है।
1: हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम ड्रॉ पर रही लेकिन थोड़ी गलतियां तो रही, सेमीफाइनल का मौका हाथ से निकला, फिर भी महिला टीम पुरुष टीमों के मुकाबले काफी अच्छी रही।
0: और ये जो जर्मनी को हरा कर भारतीय टीम जो है वो 5वें स्थान पर रही थी और 5वें स्थान पर रहना भी अपने आप में एक बहुत
1: बिल्कुल महिला टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रखते हुए उन्होंने अपनी टीम को 5वें स्थान पर रखा। और विश्व कप में सिर्फ 1 मैच हारने वाली भारतीय महिला टीम के बारे में दोस्तों हम आपको बता दें कि शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नवनीत कौर के 2 गोल की मदद से 5वीं रैंकिंग वाली जर्मन टीम को 3-1 से हराया और भारत के लिए 5वां स्थान टीम ने हासिल किया जो कि पिछले 52 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज भारत को इस टूर्नामेंट में एकमात्र पराजय का सामना करना पड़ा, वो भी ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के हाथों 2 गोल से शिकस्त मिली थी भारतीय टीम को। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ जो रहा इस वजह से वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। हालांकि कोच शॉन मारिन की टीम ने जर्मनी के खिलाफ सारी कसर निकालते हुए आखिरी 17 मिनट में 3 गोल दगवाए और भारत के लिए ईशिका नवनीत ने शानदार गोल किया। जर्मनी के लिए लिन क्रिंक्स ने 59वें मिनट में एकमात्र गोल किया। अभ्यास मैचों में जर्मनी ने भारत को हराया था लेकिन जब मैच का मौका मिला तो भारतीय टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया और इस जीत से फायदा ये होगा कि टीम का मनोबल काफी बढ़ेगा।
0: रेखा, अगले महीने होने वाले एशियाई खेलों से पहले इस प्रदर्शन से भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा और पहले ही मैच में ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 2-2 से ड्रॉ पर रोकने वाली भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया भी लेकिन इंग्लैंड से फिर ड्रॉ खेला और एकमात्र पराजय दूसरे चरण में डच टीमों के हाथों मिली लेकिन मेजबान ने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागे थे और 5वें मिनट में भारत ने पहला प्रयास किया लेकिन जर्मन गोलकीपर ने आगे की ओर बढ़कर रोक दिया था। जब इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ, देखिए कप जीतना या खिताब जीतना या टॉप पे रहना अलग बात होती है, लेकिन अगर आप अपनी रैंकिंग भी सुधार रहे हैं तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है।
1: 52 वर्षों के बाद ये मौका हुआ है कि भारत 5वें नंबर पे रहा है और ये उपलब्धि है अभी भारतीय टीम की, तो ये भी उम्मीद करेंगे कि एशिया कप में भारतीय टीम एक बार शानदार प्रदर्शन करे। वैसे एशिया में भारतीय टीम का दबदबा है, लेकिन चाइना यहाँ भी है तो मुश्किलें हैं, लेकिन इन मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय टीम एशिया कप अपने खाते में लेकर आएगी, इस उम्मीद के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद हम ये भी करते हैं कि पुरुष भारतीय हॉकी टीम भी आगे फ्यूचर में
1: पुराने दौर में लौटे।
0: बिल्कुल, और रेखा अब हम बात करेंगे चर्चा में ही खेलो इंडिया संवाद की, जिसको हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया था 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं खेलना है बल्कि उसमें रम जाना है, उसको आत्मसात करना है, और उन्होंने कहा कि ओलंपिक में पदक बढ़ाने के लिए भागीदारी भी
1: बढ़ानी होगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का भी कहना है कि भारत अभी ओलंपिक में जितने भी खेल शामिल हैं उसमें आधे से कम में हिस्सा ले रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और यदि देश को पदकों की संख्या बढ़ानी

0: अपने संबोधन में बताया भी कि 2012 ओलंपिक में भारत केवल 13 खेलों में हिस्सा ले सका था और 20 से अधिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी उतरे ही नहीं। पेरिस ओलंपिक में 32 में से सिर्फ 16 खेलों में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया था। सही कहा आपने कि 50% खेलों में ही भारतीय टीम हिस्सा ले सके थे। तो कहा जब हम कहीं खेलों में हिस्सा ही नहीं लेते हैं तो पदक जीतने के अवसर तो खुद बखुद
1: मतलब आप समझिए कि उस खेल में हमारा कोई योगदान है ही नहीं, तो फिर पदक मिलने की बात तो है।
0: इसी कवायद में प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य कम उम्र में प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण और मौका देना है ताकि भविष्य में ओलंपिक में भारत की भागीदारी और पदक दोनों ही बढ़ सके।
1: प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन और चरित्र का निर्माण करता है। एक तरह से समझिए कि अनुशासन और चरित्र को बनाए रखने का एक माध्यम है। नशे की बढ़ती समस्या से युवाओं को दूर रखने के लिए भी खेल एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्क्रीन से अधिक खेल केंद्रों की अहमियत है, प्ले स्टेशन से अधिक खेल के मैदानों की अहमियत है। मतलब खिलाड़ी मैदान में जाए और वहाँ खेलने के साथ साथ अनुशासन और अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान दें।
0: फिट भी रहे, एक तो खेल से अनुशासन सीखता है व्यक्ति और फिट भी रहता है, तो दोनों ही बातें हैं। खेल के जरिए आप स्वस्थ रहें, अनुशासन सीखें और देश को और पदक दिलवाएं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पैरा खिलाड़ियों को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी इस बात की मिसाल है कि वो खेल कर किस तरह अपने परिवार और पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कई खिलाड़ियों का भी नाम लिया, शीतल देवी, अवनी लेखरा, झंडू कुमार, सुमित अंतिल जैसे खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती है। साथ ही उन्होंने

0: कई ऐसे खेलों के लिए लोगों को आगे आने को कहा कि 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के कार्यक्रम में कई ऐसे खेल हैं जिसमें हमारी प्रतिभाएं शामिल हो सकती हैं। हमारे देश में लंबा समुद्री तट है, विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये सब क्षेत्र इन्हें तैयार करने में मदद कर सकता है, इसलिए वे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जैसे खेलों को और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी खेल प्रेमी हैं वो इस तरह के खेलों में भी हिस्सा लेंगे ताकि हमारी भागीदारी बढ़ सके, इस उम्मीद के साथ कि देश अगले ओलंपिक में और पदक लाए।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पर्सनालिटी में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जो लाइमलाइट पे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेटर ध्रुव जुरेल की, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैच हुए, ये इसमें भारत हालांकि जीता लेकिन दूसरा मैच जो है
0: वो ड्रॉ रहा
1: और इस दोनों ही मैचों में ध्रुव जुरेल का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, तो उनकी थोड़ी हम चर्चा कर लें।
0: ध्रुव उत्तर प्रदेश के हैं, 22 जनवरी 2001 को इनका जन्म हुआ था। इनका नाम है ध्रुव चंद जुरेल, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अंडर 19 स्तर पर इनके खेल की शुरुआत हुई, कम उम्र में ही क्रिकेट में इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। 2020 के अंडर 19 विश्व कप में भारत के अभियान में ये शामिल थे। घरेलू क्रिकेट में इनका शानदार प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश के लिए खेलने के दौरान इन्होंने विकेट कीपिंग के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी करके चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उनकी तकनीक और दबाव में बल्लेबाजी करने की क्षमता उनकी प्रमुख खूबियों में से एक है। आईपीएल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए ध्रुव जुरेल ने खास तौर पर फिनिशर के रूप में अपनी अच्छी छाप छोड़ी। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई और शांत स्वभाव के साथ क्रिकेट के उभरते हुए सितारों में अपने आप को स्थापित किया। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ उनका

0: रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही अंदाज अपनाते हैं। करियर की शुरुआती दौर में हैं। आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट में मिले मौकों के मुताबिक उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिना जा रहा है।
1: बिल्कुल रेखा, और अब हम बात करने जा रहे हैं आर प्रज्ञानानंदा की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने असंभव लग रही स्थिति को शानदार वापसी में बदलते हुए ग्रैंड शतरंज टूर GCT का खिताब अपने नाम कर लिया और ग्रैंड फाइनल में अमेरिका के फैबियानो कारुआना के खिलाफ दिन की शुरुआत में 6 अंक से पिछड़ने के बावजूद 21 साल के भारतीय खिलाड़ी ने धैर्य और आक्रामक खेल का शानदार मिश्रण दिखाया और उन्होंने दोनों रैपिड गेम जीतकर मुकाबले का रुख पलट दिया और आखिर में कारुआना को 15-13 से हराकर GCT का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रज्ञानानंदा ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 1.91 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी अपने नाम की। उनकी यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि फाइनल में एक समय कारुआना मजबूत स्थिति में थे और प्रज्ञानानंदा के सामने 6 अंकों की बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दबाव में रहते हुए भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 2 रैपिड गेम जीतकर रैपिड गेम के विजेता को 4 अंक मिलते हैं और इन 2 जीत से प्रज्ञानंदा को सीधे 2 अंकों की बढ़त मिल गई। प्रज्ञानंदा ने कहा कि खिताब जीतने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआत में जीत की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मुझे नहीं लगता था कि आज मेरे पास जीतने के ज्यादा मौके हैं। दिन की शुरुआत कारुआना के पक्ष में हुई थी। प्रज्ञानंदा 6 अंक से पीछे थे और उनके लिए वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन पहले रैपिड गेम में जीत हासिल करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने दूसरे रैपिड गेम में भी कारुआना को मात देकर समीकरण ही बदल दिया। 2 रैपिड जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी 2 अंकों की बढ़त के साथ ब्लिट्स चरण में पहुंच गए और इसके बाद 4 ब्लिट्स गेम खेले गए। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पहला ब्लिट्स गेम ड्रॉ रहा जबकि दूसरे में कारुआना ने जीत दर्ज कर स्कोर 12-12 से बराबर कर लिया। प्रज्ञानंदा ने हालांकि दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया और तीसरे ब्लिट्स गेम में जीत हासिल कर फिर से 2 अंकों की बढ़त बना ली। निर्णायक 4थे गेम में उन्होंने ड्रॉ खेलकर खिताब पर कब्जा कर लिया। तो रेखा, बहुत बड़ी बात है कि आप एक जगह पे लग रहा है कि आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है और उसके बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज करना, खिताब जीतना, बहुत
0: हमारे ही शतरंज के खिलाड़ी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर्सनालिटी में अभी बात कोको गॉफ की, क्योंकि सिनसिनाटी ओपन में दूसरी बार चैंपियन बनी है। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है ये। वर्ल्ड नंबर 4 गॉफ ने नंबर 3 जेसिका पेगुला को लगातार सेट में हराया। फाइनल में गॉफ ने अमेरिका की पेगुला को 6-2, 6-4 से मात दी। ये खिताबी मुकाबला 75 मिनट तक चला। ये गॉफ का 2026 में पहला खिताब है। जीत के साथ ही गॉफ ने इस महीने होने वाली घरेलू ग्रैंड स्लैम US ओपन से पहले अपने आत्मविश्वास को काफी बढ़ा लिया है। 2023 में जब गॉफ ने सिनसिनाटी ओपन जीता था तो अपना पहला US ओपन ग्रैंड स्लैम भी जीता था। 22 साल की उम्र में गॉफ के करियर का यह 12वां खिताब है। साथ ही यह उनका था WTA 1000 खिताब और दूसरा सिनसिनाटी ओपन खिताब है। ओपन एरा में एक से अधिक बार सिनसिनाटी ओपन जीतने वाली गॉफ दुनिया की केवल 3री महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले ये कारनामा सेरेना व अंजारेका ने किया था। ये 2026 में गॉफ की 40वीं जीत है। टॉप 10 खिलाड़ियों के खिलाफ यह इस साल उनकी 4थी और करियर की 37वीं जीत है। गॉफ ने अपने पिछले 10 मैचों में से 9 में जीत दर्ज की है। तो पर्सनालिटी में गॉफ की जानकारी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय खेल खबरों का। खेल समाचारों में सबसे पहले बातें महिला क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड को 94 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ टीम ने थाईलैंड पर अपना अजेय अभियान बरकरार रखा। भारत ने इस फॉर्मेट में विरोधी टीम के खिलाफ खेले गए सभी 4 मुकाबले जीते हैं। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 159 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा ने 50 चढ़ा। उनकी बदौलत एक समय पर टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार जाता नजर आ रहा था, लेकिन 91 रन पर 1 विकेट की मजबूत स्थिति में सिर्फ 46 रन में 8 विकेट गंवाने के कारण टीम को 160 रन के आंकड़े तक भी पहुंच पाना मुश्किल हो गया। हालांकि ये स्कोर भी काफी बड़ा साबित

0: हुआ क्योंकि थाईलैंड की पूरी टीम 16.1 ओवर में केवल 65 रन पर सिमट गई। थाईलैंड की 10 बैटर्स डबल डिजिट तक नहीं पहुंच सके। दीप्ति शर्मा ने बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए।
1: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 194 रन के बड़े अंतर से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। इस जीत के साथ इंग्लिश टीम ने दिसंबर 2024 के बाद पहली टेस्ट सीरीज अपने नाम की। मुकाबले के चौथे दिन इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के सामने 389 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 14 रन पर 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन सौद शकील ने 97 रनों की पारी खेली और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। शान मसूद ने 25 रन बनाए और 97 रनों की साझेदारी निभाकर पारी संभाली। शकील ने 122 गेंदों की अपनी पारी में 13 चौके और 2 छक्के जड़े, लेकिन 111 के स्कोर पर इस साझेदारी के टूटते ही पाकिस्तान की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। मैच 83 रन के भीतर अपने अंतिम 7 विकेट गंवाकर पाकिस्तान की पूरी टीम 194 रनों पर ढेर हो गई। मुकाबले की दोनों पारियों में 4-4 विकेट लेने वाले ओली रॉबिन्सन लगातार दूसरे मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
0: दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने मेजर लीग सॉकर में अपने जादुई खेल से पूरी दुनिया को रोमांचित कर दिया। सीएफ मॉन्ट्रियल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मेसी ने 4 गोल दागे और 1 असिस्ट किया। उनके इस असाधारण प्रदर्शन की बदौलत इंटर मियामी ने सीएफ मॉन्ट्रियल को 7-1 के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। मेसी ने 40वें, 52वें, 83वें और 96 मिनट में गोल किए। उनके अलावा कैसमीरी, लुइस सुआरेज, अलेक्जेंडर शॉ ने 1-1 गोल किए। यह इंटर मियामी के क्लब इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत रही। इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ही मेसी अब MLS की गोल्डन बूट रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं। उनके 18 गोल हो गए हैं। उन्होंने FC डलास के पेटर मूसा को पीछे किया है।
1: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का इस्तेमाल आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के रूप में करेंगे। कमिंस के साथ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड भी इस योजना में जुड़ सकते हैं। इस बीच कमिंस ने संकेत दिया है कि वे जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं। साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद कमिंस ने इस फॉर्मेट में केवल 2 मुकाबले खेले हैं। कमिंस ने अपना पिछला वनडे मुकाबला नवंबर 2024 में खेला था। यह दौरा 24 सितंबर से शुरू होगा।
0: BCCI ने 5 सदस्यीय नई जूनियर क्रिकेट चयन समिति के लिए आवेदन मांगे हैं। अगले महीने AGM में घोषित होने वाली समिति S शरद की अध्यक्षता वाली मौजूदा चयन समिति की जगह लेगी। नई समिति का काम सिर्फ टीम चयन तक सीमित नहीं रहेगा। सेलेक्टर्स अंडर 19 स्तर के खिलाड़ियों को ड्रग्स, सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के खतरों के प्रति जागरूक भी करेंगे। BCCI का मानना है कि कम उम्र में पैसा और शोहरत मिलने से खिलाड़ियों के भटकने का खतरा बढ़ जाता है। समिति अंडर 22 तक की टीमों का चयन, टैलेंट स्काउटिंग, कप्तानों की नियुक्ति और टूर्नामेंट संचालन भी देखेगी। इसके अलावा कोच, फिजियो, ट्रेनर और एनालिस्ट समेत सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति और प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करेगी। आवेदन के लिए कम से कम 25 प्रथम श्रेणी मैच खेलना और संन्यास लिए 5 साल होना जरूरी है। BCCI की किसी क्रिकेट समिति में 5 साल पूरा कर चुके सदस्य पात्र नहीं होंगे।
1: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में पहली बार ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश के खिलाफ मैके टेस्ट में 10 विकेट झटकने के दम पर उन्होंने भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर नंबर 1 का ताज अपने पास रख लिया। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे स्थान पर खिसक गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चौथे स्थान पर पहुंचे और नाथन लियोन ने भी टॉप 10 में फिर से जगह बना ली। बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक शीर्ष पर बरकरार है। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत 6 पायदान छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
0: भारत के खिलाफ 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है। पेसर नवीन उल हक 1.5 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। कंधे की चोट और सर्जरी के कारण वे दिसंबर 2024 के बाद से टीम से बाहर थे। मैच 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे।
1: भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा चोट के कारण 2026 के बाकी सत्र से बाहर हो गए। अभ्यास के दौरान उनके टखने का लिगामेंट फट गया। उनके बाहर होने से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के स्वर्ण पदक अभियान को बड़ा झटका लगा है। नीरज ने कहा कि लुसाने डायमंड लीग में सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कुछ समय बाद अभ्यास के